जा बुरा करते हाल, पलक फड़के हाय के दिल धड़के, उमर की उठा कड़कती कमा, कातिल अदा जालिम हया।

Yeah, भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने वैसे इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: अच्छा मुझे बताओ, आपके फोन पे टू डू लिस्ट होती है?
1: Well, मेरे फोन में भी है, लेकिन बस फर्क ये है कि मेरी टू डू लिस्ट ना हमेशा वहीं पर टिकी रहती है, वहां से कभी खत्म नहीं होती है, निकलती नहीं है।
0: वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सिंपली आफरीन, राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और आज सुबह मुझे ऐसे ही ख्याल आया कि भाई मैं हर हफ्ते ऑनेस्टली ना एक टू डू लिस्ट जरूर बनाती हूँ, बट समटाइम्स ना आई ऑलवेज फेल। हाँ जी, ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी तरह मैं उसे फॉलो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन कभी कभार कर भी देती हूँ एंड काफ़ी सारी चीज़ें छूट भी जाती है। एंड देन द गिल्ट विच फॉलोज, माई फ्रेंड, गिल्ट फॉलोज इज जस्ट टू हाई। इफ यू आर इन माई शूज, लेट मी टेल यू, तो मेरे ख्याल से हमें एक नई स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। हमें ना एक टू डू लिस्ट वो सारी छोटी छोटी चीजों की पहले बनानी चाहिए, और ये टू डू लिस्ट जो होती है ना हमारी लंबी नहीं होनी चाहिए। अगर हर दिन की एक टू डू लिस्ट बनती है तो बिल्कुल ही छोटी, एक दो टास्क की ही हो, या एक हफ्ते की अगर टू डू लिस्ट होती है तो भी उसे बहुत लिमिट ही करो। तो उस तरह से क्या होगा कि वी वॉन्ट फाइंड दैट देर इज अ माउंटेन फॉर अस टू कॉन्कर। हमें ये लगेगा कि हाँ जी, ये छोटी छोटी चीजें पहले कर लेते हैं और फिर उसके बाद में जो सेंस ऑफ अचीवमेंट मिल जाती है हमें, आए हाय। वेल बाय द वे, ये जो फॉर्मूला है, पैतरा है, मैं खुद अपनाऊंगी और फिर मैं आपको पहले बताती हूँ कि यार वॉज इट सक्सेसफुल और नॉट। तब तक के लिए आप भी पैरेलली कर लीजिएगा। माइक से दिल तक आफरीन है, आपके साथ खूब सारे गप्पे होंगी, बातें होंगी, एक अलग ही टाइप की एनर्जी में लेकर आती हूँ सुबह सुबह आपके दिन की शुरुआत बेहतरीन बनाने के लिए मिर्ची मॉर्निंग्स पर। I enjoy. It's hot.

अच्छा आप भी अपने स्टेप्स काउंट करते हो डेली बेसिस पर? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफरीन है आपके साथ ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. एंड यू नो व्हाट, आजकल हम सबके लिए स्टेप्स काउंट करना ना ऑलमोस्ट एक डेली रूटीन का हिस्सा बन गया है. 5,000 हुए, 8,000 हुए, 10,000 कंप्लीट हुए या नहीं. एंड एक्चुअली यू नो व्हाट, इट्स ऑफ कोर्स अ गुड थिंग. हम अपनी हेल्थ को लेकर डे बाय डे थोड़े कॉन्शियस और होते जा रहे हैं. लेकिन इमेजिन कीजिए अगर आपके वही स्टेप्स आपकी हेल्थ के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट कॉज के लिए भी काउंट हो जाए तो. वेल यस, दिस अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के ओकेजन पर नसीम हेल्थ केयर ब्रिंग्स कैन वॉक एवरी स्टेप मैटर्स, अ वॉकथॉन डेडिकेटेड टू ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस. तो फिर ज्वाइन कीजिए फ्राइडे 2nd अक्टूबर फ्रॉम 6 AM टू 9 AM एट अस्पायर पार्क नियर शुगर एंड स्पाइस रेस्टोरेंट. देखिए फैमिली हो फ्रेंड्स हो, कम वॉक टुगेदर अर्ली राइजर्स के लिए. यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री टी शर्ट्स है, रिफ्रेशमेंट्स भी है एंड रजिस्ट्रेशन इज थ्रू द QR कोड. तो 2nd अक्टूबर को अपने स्टेप्स सिर्फ काउंट मत कीजिए, मेक देम एक्चुअली काउंट फॉर अवेयरनेस. माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirci, burga. Burga.
2: हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए।
3: क्या बोलूँ जी, आप बोलिए।
2: आप बोलिए ना।
3: कॉल आपने किया, आप बोलिए।
2: कॉल मैंने किया है। हेलो।
3: अरे बोलो भाई, कॉल तुमने किया, बोलो क्या हुआ।
2: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार, मैं यहाँ सो रहा हूँ, आपने मुझे कॉल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार। आपने नंबर मेरा डायल किया है, मेरे घर बेल बजी है यार।
3: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा। अरे फोन मैंने नहीं किया यार,
2: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार, मेरे यहाँ भी बेल बजी है।
3: नींद में है क्या?
2: मैं नींद में ही था, आपने डिस्टर्ब कर दिया, मैं देख रहा हूँ नंबर।
3: क्या बेल मेरे यहाँ बजी है?
2: आ जाते उठ के, मैं तो फोन काट रहा हूँ, फोन रखी तेरे। हेलो, हाँ बताइए।
3: तेरी जेब में फोन रखा होगा, वो बटन दब रहा होगा बार बार।
2: बात करनी है तो बात कर लीजिए, आप दो बार फोन कर चुके हैं, आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है। आप बताइए मुझे प्लीज, क्या काम है।
3: हेलो,
2: फिर कोई यार, आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार, मैं आपसे प्यार से बात करने जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं।
3: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा, मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम, मैं फोन नहीं कर रहा।
2: तो आप गाड़ी चलाइए, नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए, आप अपना काम करिए, फोन मत करिए मुझे कम से कम यार, फोन मत करिएगा बस यहाँ पे।
3: फोन नहीं कर रहा अभी,
2: मैं देखिए बदतमीजी से बात मत करिए, आप समझ गए, मैं यहाँ से रैप चाटा मार दूंगा, बता रहा हूँ मैं यहाँ से। हाँ ना, मेरे चप्पल लेके आ, ये मेरे हाथ में चप्पल है, मैं बता रहा हूँ, मैं
3: चप्पल
2: पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते, मैं सो रहा हूँ यहाँ पे, फोन
3: क्यों आराम कर दिया तुम जैसे
2: जीना बता रहा यहाँ से। इस बार अगर कर दिया ना तो बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा, चप्पल है मेरे हाथ में।
3: फोन आ रहा है, मेरी आ रहा है फोन, जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले।
2: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ, मेरी बात सुनिए। अभिषेक, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं, तुम मुर्गा बन गए हो। ये सारी कॉल्स मैंने करी थी।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: खट खट,
6: हु दैट?
5: जस्सी।
6: जस्सी, कौन सी वाली जस्सी?
5: जस्सी हु हैज कम आंटी जी।
6: खट खट, हु दैट?
4: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

देखो एक बात तो पक्की है, रेडियो सुन रहे हो मतलब म्यूजिक का शौक रखते हो, तो चलिए ये खबर आपके लिए। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और ऑल द म्यूजिक शौकीन्स आउट देयर, आपके लिए एक जबरदस्त सा प्लान बताती हूँ। फॉर 9th of October फ्राइडे, बंट्स कतर इज ब्रिंगिंग तारंग 2026, तारंग 2026 म्यूजिकल नाइट है विद कल्चरल एक्स्ट्रावेगेंजा। एंड यू नो व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी एन इवनिंग पैक्ड विद म्यूजिक है, डांस है, फुल ऑन एंटरटेनमेंट होने वाला है। देयर इज गोइंग टू बी लाइव परफॉर्मेंसेस बाय अनुराधा भट्ट, शेखर शेट्टी, जसकीरत सिंह अलॉन्ग विद सम फैंटास्टिक म्यूजिशियंस। एंड यू ऑल्सो हैव नृत्य वैभवा, एक स्पेशल डांस प्रेजेंटेशन बाय बंट्स कतर मेंबर एज वेल। ये सब कुछ हो रहा है 9th अक्टूबर को फ्राइडे, जैसे मैंने बताया है। और ये DPS ऑडिटोरियम अल वक्रा 4:30 PM onwards हो रहा है। अब आते हैं इसके सबसे बेस्ट पार्ट पर। देखिए भाई, एंटरटेनमेंट किसे नहीं चाहिए जिंदगी में, और ऐसा एंटरटेनमेंट जो बिल्कुल फ्री में मिले, ऑफ कोर्स। सो फ्री है ये बिल्कुल, एंड यू कैन गो विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली, बस जाके म्यूजिक, डांस, ये सब कुछ आप वहां पर एंजॉय कर सकते हो। वेयर इट इज बंट्स कतर प्रेजेंस तरंग 2026 एट DPS ऑडिटोरियम। मैं हूं आफरीन आपके साथ, माइक से दिल तक, राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: वरना छोड़ दे।
1: खटखट हो दे।
2: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: Well, that was Arijit Singh aur Nikita Gandhi ki awaaz mein ye khoobsurat sa gaana right here on Mirchi. Very good morning, my Babu Shai. बंधु दोस्त आप सभी को बहुत ज्यादा गुड मॉर्निंग है. आज की मॉर्निंग जेन्युइनली बहुत गुड लग रही है क्योंकि यार वीकेंड जब आ जाता है ना इतनी जल्दी तो बस ऐसे ही कुछ फील होता है. वेल 24th ऑफ सितंबर इट इज ऑलरेडी थर्सडे का दिन है. हम बस एक हफ्ता दूर है हमारा ये महीना खत्म होने से भी. एंड आई जस्ट कांट बिलीव यार मजा ही आता है कि जब ऐसे फटाफट से जब वीकेंड आता है ना तो डेफिनेटली. एंड जब आप लोगों के मैसेजेस आते हैं सुबह सुबह जैसे आलीशान का मैसेज इधर आ चुका है already good morning afreen happy weekend apart from that I have your zulfikar and ashraf saying good morning ji welcome to the morning with smile on your face love in your heart good thought in your mind that is harpal sandhu from dukhan zikrit then I also have good morning kon hai ji apna naam to bataya karo I think so this is sayed abdul hakim saying good morning to us good morning afreen sister kulwant singh ye bhi kehna chahte hain robert dzusa ka bhi message aaya hai very good morning and I just love कि सुबह सुबह आते ही इतने सारे गुड मॉर्निंग में आप एक्चुअली मेरा मॉर्निंग गुड कर लेते हो. 5001896 इज माय व्हाट्सएप नंबर टू कनेक्ट टू विश या फिर बस ऐवे यार ठीक है.
1: नाम तो जानते हो मेरा तापमान सलमान.
0: वेदर अपडेट. वेल अच्छी अच्छी वाली ये सारे विशेष होने के बाद जरा वेदर पे ध्यान देते हैं. 42 डिग्री सेल्सियस इज द मैक्सिमम टेम्परेचर टुडे व्हेयरएज 30 डिग्री सेल्सियस इज द मिनिमम टेम्परेचर. ह्यूमिडिटी जो है वो 76% पर है. हवाएं 5 किलोमीटर पर आवर पर चल रही है. ऑल इन ऑल वेदर आंकड़ों में तो वही कह रहा है जो पिछले मेरे ख्याल से एक महीने से कह रहा था. लेकिन अगर हम एक्चुअली उसे महसूस करें तो रात के वक्त शाम के वक्त थिंग्स हैव गॉट मच मच मच बेटर है ना. विद दिस चलिए बहुत ही मजे का गाना यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा गाना है उससे विद टू स्वीट सिंगर्स अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज में. एंजॉय दिस लवली ट्रैक माइक से दिल तक आफरीन के साथ. इट्स हॉट

0: Hollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अनु मलिक, आपको देख के लगता है कि जब आप पैदा हुए ना, आपने पहले मम्मी कहा ना पापा, आपने कहा होगा देखो बारिश हो रही है। But really, tell us how old were you when you made this song?
3: What I was 25 or something. It was raining cats and dogs. Waterfall से पानी गिर रहा था। सारे बादल नीचे आ चुके। And उस बीच में ना I saw the little train coming out. देखो बारिश हो रही है। देखो ना देखो, it's raining, it's raining, it's raining.
2: अब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और बाबा ब्लैक शीप के साथ में ये वाला गाना तो ऐड कर ही लेना चाहिए स्कूल्स में, है ना अनु मलिक? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स आउट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: खट खट,
5: कौन है?
4: इशांत।
5: इशांत कौन?
4: इशांत गदाधारी भीम इशांत।
5: खट खट, हू दैट?
6: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot. It's hot.

0: like love, love.
1: What a song यार, और मुझे ये गाने की सबसे अच्छी बात ये लगती है जो सिंगर्स चूज किए गए हैं, सुरेश वाडकर की एक अलग ही मधुर सी आवाज जो हम ज्यादा नहीं सुन पाए थे 90s में. Yes, he sung several songs in of 80s and all. 90s के काफी कम ही मुझे ऐसा लगता है पॉपुलर सॉन्ग्स हैं उनके, बट रेखा भरद्वाज की आवाज जो है कितनी प्यारी नमकीन सी आवाज इस मीठी सी आवाज के साथ. तो मैं कहना चाहूंगी ये गाना वो मीठा नमकीन सा बिल्कुल गाना सा था. हाँ जी, वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफ्रीन को दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग मिर्ची मॉर्निंग्स पर. एंड क्योंकि आज वीकेंड है, आई एम श्योर यू हैव ऑलरेडी मेड सम प्लान्स एंड यू हैव नॉट माइट हैव मेड सम प्लान्स. तो मैं बता दूं कि जैसे वेदर थोड़ा सा बेहतर हो रहा है और अगर आप बच्चों को कहीं ले जाना चाहते हो, कुछ स्कूल्स की एग्जाम्स जो है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी हैं एंड कुछ स्कूल्स की शुरू होने वाली है. सो वेल, अगर आपको जो है लेकर जाना है बच्चों को, अगर आप वक्रा की साइड पर है, then let me tell you there is a new playground to check out in Qatar and this is located in Al Wukair. उसका नाम है Al Araq Park. Well, this is a newly opened public park. पहले तो बता दूं मैं आपको, ये जो पार्क है, this features a 222 meter square children's playground. अच्छा खासा बड़ा playground है, बहुत सारी green spaces है, एक jogging track है. In fact, there is also an outdoor fitness equipment and seating area for families. तो all in all, जब इस तरह से कतर आउटडोर स्पेसेस खोल देता है फैमिलीज के लिए, बच्चों के लिए, दिस इज़ अ ग्रेट साइन कि भाई बच्चे बाहर जाकर थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करें और उसी बहाने पेरेंट्स भी, जहाँ बच्चे एक तरफ प्लेग्राउंड पे खेल रहे हैं, पेरेंट्स भी थोड़ा सा टहल ले. यार ऑल इन ऑल मैं देखो, दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर यू. सो अगर कोई प्लान है, कोई नई जगह एक्सप्लोर करनी है, देन Al Araq Park इज द वन इन Wukair. मैं हूँ आफरीन आपके साथ, दिस बिंदास बंदी ब्रिंगिंग दिस ट्रैक फॉर यू KK की आवाज में. एंड आई कैन ओनली इमेजिन बिग बी डांसिंग ऑन दिस ट्रैक. या बंदा ये बिंदास राइट हियर ऑन 89.6 मिर्ची 1 माइक सदल तक आफ्रीन के साथ. इट्स हॉट.

0: से है।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: ये जब से मुझे चश्मा लगा है नंबर बढ़ता ही जा रहा है, इसे कैसे रोकूं?
2: अरे सिंपल है ना मामू, पहली फुर्सत में चश्मा निकाल के साइड में रख दो ना, प्रॉब्लम सॉल्व।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
2: वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफरीन का साथ है दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग और मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 7 बजे की तरफ. स्टे ट्यून्ड विद मिर्ची, इट्स हॉट.
3: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.

देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट एआई, व्हाट वी इमेजिन, हम चैट जीपीटी को जानते हैं, बेसिकली एक स्क्रीन के अंदर बैठा हुआ असिस्टेंट. बट अब एआई धीरे धीरे स्क्रीन से निकलकर एक्चुअल पब्लिक स्पेसेस में आकर खड़ा हो गया है. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरी. को एआई एक्चुअली रस्ते पर खड़ा मिलेगा आपको, और वो भी कहाँ पता है? मुशर्रफ डाउनटाउन में. इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, राइट? सो लेट मी टेल यू, मुशर्रफ डाउनटाउन दोहा में आपको मिलेंगे राशिद. इनका नाम राशिद है, एंड एआई पावर्ड डिजिटल कॉन्सियर्ज. राशिद 15 इंटरैक्टिव स्मार्ट कियोस्क पर अवेलेबल है 24/7. आप उससे डायरेक्शंस पूछ सकते हैं, रेस्टोरेंट्स फाइंड कर सकते हैं, अपकमिंग इवेंट्स चेक और बुक कर सकते हैं, डाइनिंग रिजर्वेशंस में भी हेल्प ले सकते हैं, एंड इवन पार्किंग फी पेमेंट तक कर सकते हैं राशिद की हेल्प के साथ. एंड यू नो व्हाट वन इंटरेस्टिंग local touch to this is that Rashid uses Fanar, Qatar's Arabic large language model, and there's even a holographic version of the technology. So AI ka next chapter shayad sirf ask me anything nahi hai, it's becoming where do you want to go, what do you want to book, and shall I help you do it, and ye sab kuch Rashid ke zariye, matlab aisa ek public spaces par aapko ye screens aur ye sari cheeze milegi to interact with Rashid. Agar this weekend you're planning to go to Mushrifa downtown, then zarur try kariyega, and then let me know. Theek hai, Mike Siddhal तक आफरीन है और मिर्ची इज हॉट.

0: Milci. Buscabana, buscabana, sacabana. Gabana. Burga, burga. La vedova la burga.
1: Milci, burga. हेलो हेलो विनीत जी।
2: हाँ जी
1: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर। क्या हाल चाल है, शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
2: सही है, हाँ मैं तो चल रही है।
1: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
2: 7:30 बजे तक।
1: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई हमारे, जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं
2: 9:30-10 बजे तक। ये बताओ ना बच जाएगा?
1: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
2: पागल हो गए हो क्या? क्या बजाएगा अकेला वो?
1: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये ना ये अच्छा अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए हैं सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
2: मैं क्या बात करूं यार, अकेला क्या बजाएगा?
1: नहीं वही मैं आपको बता रहा हूं सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूं आप घोड़ी पे चढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए ये देखिए।
2: हेलो
1: हाँ विनीत जी मजा आया? ये मिस्टर थॉमस ये
2: क्या बजा रहा है, ये सुना आपने?
1: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर। मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चढ़ रहे हैं सर?
2: मैं घोड़ी तो चढ़ जाऊंगा यार।
1: अच्छा सर मैं मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चलेंगे मिस्टर थॉमस घोड़ी चलने वाले चलाएंगे?
2: हेलो हेलो
1: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
2: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये?
1: विनीत मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, अभी पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर।
2: अरे कॉफिन
3: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो मुबारक हो आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मन मानिए।
2: अच्छा भैया
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सेटाइल शॉकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
5: तनिष्क लेकर आए हैं गार्डन ऑफ जेम्स, जहां कलर इज द स्टोरी बिहाइंड एवरी स्टोन, मेड टू बी वोन ऑफन। पहनिए चाहे क्लासिक डिनर ओकेजन के लिए, फैमिली फंक्शंस के लिए या अ रेगुलर ऑफिस डे, अवेलेबल अक्रॉस तनिष्क स्टोर्स इन कतार और ऑनलाइन एट tanishq.ae। विजिट अ तनिष्क स्टोर नियर यू एंड सी द कलर्स इन पर्सन। TNC सप्लाई।
6: यार शॉपिंग का प्लान है पर बजट थोड़ा टाइट लग रहा है।
7: अरे रिलैक्स, लूलू का हाफ पे बैक ऑफर सुना है?
6: हाफ पे बैक मतलब?
7: बस QAR 200 की शॉपिंग करो और QAR 100 का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली।
6: वाओ, किस किस चीज पे?
7: रेडीमेड गारमेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग और बेबी एक्सेसरीज।
6: मतलब शॉपिंग भी सेविंग भी?
7: बिल्कुल, वाउचर भी इन्हीं कैटेगरीज में रिडीम कर सकते हो, तो देर किस बात की। हेड टू लूलू, हाफ पे बैक ऑफर के साथ डबल फायदा। लूलू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
8: बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
9: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
10: कैसे रुक सकता है?
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

Well, that was a beautiful track, Chinmay Sripada aur Gopi Sundar ki awaaz mein, right here on Mirchi from the movie Chennai Express. अच्छा, आइसक्रीम हम खाते हैं, आइसक्रीम हम बनाते हैं, लेकिन आइसक्रीम का एक शो और एडवेंचर क्या हो सकता है? वेल, ये जानने के लिए आपको तो मेरे ख्याल में मॉल ऑफ कतर जाना पड़ेगा. वेल, यहाँ पर 24 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर तक ओएसिस स्टेज, यस द बिग स्टेज जो है, वहाँ पर आइसक्रीम शो हो रहा है, जिसके टाइमिंग्स कुछ इस तरह से है, 4:30 बजे, 6 बजे एंड 7:30 बजे. अब वॉट इज दिस एंटायर शो? इट्स अ स्पेक्टेक्युलर शो. इट्स अ लाइव शो फिल्ड विद लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स, कलरफुल विजुअल्स, इंटरैक्टिव साइंस, यस इसके पीछे साइंस भी है, सरप्राइजिंग डिस्कवरीज एंड प्लेंटी ऑफ आइसक्रीम्स. बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है ये सब कुछ सुनकर. सो अगर ऑफकोर्स आई हैव नेवर विटनेस समथिंग कि आइसक्रीम शो भी हो सकता है, क्या हो सकता है, देन आई थिंक सो यू शुड डेफिनेटली प्लान अ विजिट देयर दिस वीकेंड. माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ ऐसे ही मजेदार बातें कतर के होने वाले इवेंट्स, क्योंकि इट्स वीकेंड यार. एंड नॉट ओनली अबाउट कतर इवेंट्स, हम घर पर भी कैसे एंटरटेन हो सकते हैं ये सब कुछ बताऊंगी यार थोड़ी ही देर में. मीनवाइल श्रेया घोषाल की आवाज में चलो ये गाना एंजॉय करते हैं.

चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा।

आँखों से हटाया चश्मा आँखें तो मिलाओ जी, दुनिया वाले जो भी बोले हमसे ना शर्माओ जी, अब फोन को उठाओ जी और डैडी को मिलाओ जी, उनके फ्यूचर सन इन लॉ की बात उनसे करवाओ जी।

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
3: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं, और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: रेडी
6: रेडी
5: टू लर्न?
6: यस।
5: टू प्ले?
6: एब्सोल्युटली।
5: टू ग्रो?
6: विद मेज़राती।
7: दिस स्कूल सीजन फ्यूल एवरी डे विद डिलिशियस एंड न्यूट्रिशियस मेज़राती फ्रेश प्रोडक्ट्स। From breakfast to lunchbox and snacks, Maserati has your family covered. Grow with Maserati freshly from Qatar.
8: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
9: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
8: This initiative is driven by GWM.
10: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
11: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
12: बार बार।
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
13: 89.6
14: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: darling. Every breath you take, every move you make, I will be there with you. What would I do without you? I want to love you forever and ever.
1: वेल दैट वॉज कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में 90s का एक क्लासिक सॉन्ग राइटर ऑन मिर्ची. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. इट इज वीकेंड, 24th ऑफ सितंबर है, वीकेंड है, थर्सडे है और वीकेंड के साथ साथ अब मेरी एक्साइटमेंट आ गई है उस गेम की तरफ जो हम इस वक्त पर हर रोज खेलते हैं जिसका नाम है लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट. सीन सुना रही हूँ दोस्त, सुनो और बताओ मुझे कि ये कौन सी मूवी से सीन है. रेडियो सेट्स के वॉल्यूम गोज हाई एंड योर इट इज
2: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट. सीन टेस्ट.
3: देखो जितने खुश तुम अलीशा के साथ लगते हो उतने खुश तुम मेरे साथ तो कभी नहीं लगे. नहीं क्योंकि मुझ में वो सारी बातें थी नहीं ना जो अलीशा में है, जो तुम चाहते थे.
4: पहल, तुम में सब कुछ है, तुम समझदार हो, सबका ख्याल रखती हो.
1: ओके आई थिंक सो. इससे ज्यादा अब मैं सुनाऊंगी तो आप लोग और भी ज्यादा इजीली पकड़ लोगे. बट विद दिस आई थिंक सो दिस इज अ क्वाइट बिग हिंट एंड काफी सारे मैसेजेस ऑलरेडी इट्स फ्लोइंग इन. 5001896 इज माय व्हाट्सएप नंबर. लेट मी रिपीट इट वेरी स्लोली जस्ट फॉर यू. 5000 किया टाइप 1896 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है. यहाँ पर आकर वॉइस मैसेज भेजो या फिर टेक्स्ट मैसेज भेजो, वॉट एवर यू विश, बट डू कम एंड रिप्लाई. मीनवाइल चलिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं. अलका याग्निक येट अगेन बट दिस टाइम नॉट विद कुमार सानू बट दिस इज बाबुल सुप्रियो. यार एक जमाना था जब बाबुल सुप्रियो के भी गाने. 5001896 इज माई व्हाट्सएप नंबर. लेट मी रिपीट इट वेरी स्लोली जस्ट फॉर यू. 5000 किया टाइप 1896 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है. यहाँ पर आकर वॉइस मैसेज भेजो या फिर टेक्स्ट मैसेज भेजो, वॉट एवर यू विश, बट डू कम एंड रिप्लाई. मीनवाइल चलिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं. अलका याग्निक येट अगेन बट दिस टाइम नॉट विद कुमार सानू बट दिस इज बाबू.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: करण जौहर, ऑनेस्टली बताइए, व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट द मॉनसून?
3: बारिश का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ मैं, हमेशा कहता हूँ कि आसमान के आंसू अभी गिरने लगे हैं। ऑलवेज लुक एट मॉनसून के ये बस उनके आंसू हैं, तो वी हैव टू पहुंच जाए जल्दी तो क्या। बट आई नो के रेन और बारिश बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो तीन महीने में हमेशा ये मेरे फेवरेट महीने नहीं है साल के।
2: ये थे करण जौहर, हु स्पोक लाइक अ ट्रू ब्लू मुंबईकर। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: तनिष्क लेकर आए हैं गार्डन ऑफ जेम्स, जहां कलर इज द स्टोरी बिहाइंड एवरी स्टोन, मेड टू बी वोन ऑफन। पहनिए चाहे क्लासिक डिनर ओकेजन के लिए, फैमिली फंक्शंस के लिए, या अ रेगुलर ऑफिस डे। अवेलेबल अक्रॉस तनिष्क स्टोर्स इन कतार और ऑनलाइन एट tanishq.ae। विजिट अ तनिष्क स्टोर नियर यू एंड सी द कलर्स इन पर्सन। TNC अप्लाई।
5: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
6: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musty, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
5: This initiative is driven by GWM.

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहाँ कहाँ थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुँचाया।
7: यहाँ की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहाँ का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कदर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: वेल, अगर आपको ये मूवी कौन सी है पता है, ये गाना कौन सी मूवी से पता है, देन आपको श्योरली पता होगा मेरे सवाल का जवाब भी। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफरीन है आपके साथ ऑन दिस ब्यूटीफुल डे, बिकॉज यार व्हेन इट्स थर्सडे एवरीथिंग अराउंड मी आई फाइंड इट ब्यूटीफुल। सो वेल, यहाँ पर सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा था, लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट, जो मेरा फेवरेट वाला गेम है, हम वो खेल रहे थे, जहाँ सीन सुनाया था, आपने गेस करना था ये सीन है कौन सी। सो हियर इट गोज,
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट, सीन टेस्ट।
2: देखो जितने खुश तुम अलीशा के साथ लगते हो उतने खुश तुम मेरे साथ तो कभी नहीं लगे। नहीं, क्योंकि मुझ में वो सारी बातें थी नहीं ना जो अलीशा में है, जो तुम चाहते थे।
3: पहल, तुम में सब कुछ है, तुम समझदार हो, सबका ख्याल रखती
0: हो। ओके, इतनी स्वीट हो, हाय हाय हाय, कितनी तारीफें कर रहे हैं, शायद झूठी, बट यस। वेल, कौन सी मूवी है ये? यहाँ पर बहुत लोगों के मैसेजेस आए हैं एंड आई फाइंड सम योर आंसर्स एज वेल। जैसे संजीवा ने मैसेज किया कि ये ऐश्वर्या राय है, ए दिल है मुश्किल से। एक्चुअली क्या ऐश्वर्या की आवाज़ जैसी लगी क्या? दिस एंड समवन ऑल्सो सेड कि ये विवाह मूवी है, विवाह मूवी, शायद एक्टर्स सेम हो सकते हैं जो विवाह में थे, लेकिन ये विवाह भी नहीं है। देन समवन हैड टू से कि ये मैं हूँ ना है, अमृता राव की आवाज़ पहचान ली है, बट नो माई फ्रेंड, इट इज़ नॉट इवन दैट। अब आफरीन पहली आना बुझाओ, आंसर क्या है बताओ। सो वेल, दिस इज इश्क विश्क जिसने यहाँ मैसेज किया है। आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल हुज मैसेज मी, जैसे मोहसिन का मैसेज है, देन आई ऑल्सो हैव सुलेमान एंड खुमैल जो सबसे पहले मैसेज कर देते हैं। मोहसिन ऑल्सो सेज दैट दिस इज वन ऑफ हिज फेवरेट मूवीज ऑल टाइम। चार्ली का मैसेज है सेइंग इट इज इश्क विश का आफरीन। देन देव ऑल्सो राइट नाउ मैसेज अस सेइंग दैट आफरीन, यस, ये शाहिद कपूर की डेब्यू मूवी है इश्क विश, हाउ कैन वी फॉरगेट दिस मूवी, जिसमें शाहिद कपूर इतने क्यूट से लग रहे थे। बट डिड यू नो के शाहिद कपूर एक्चुअली रिजेक्ट किए गए थे फॉर दिस रोल, बिकॉज जब उन्हें एक साल पहले बिफोर द शूटिंग स्टार्ट Ken Ghosh was the director of this movie and he was quite skinny, and we know Shahid Kapoor ko humne kuch music videos mein dekhe hai, tab wo kaise dikhte the na, aankhon mein tera hi chehra dhadkan mein, remember that Shahid Kapoor, and then he was quite skinny, then he got 1 year's time ke thoda sa body building kar le, khud par dhyan de, and that's how then Shahid bagged this role. Apart from that, if you remember Shehnaz treasure wala, I am not sure of her entire name, lekin अमृता राव के साथ साथ जो दूसरी एक्ट्रेस थी, उन्हें तो केन घोष ने एक पब में देखा था एंड ही अप्रोच्ड हर कि यार तुम मेरी मूवी में काम करोगे, ऐसा होता था यार वो टाइम पर, ऐसे लोगों को अप्रोच किया जाता था। चलिए कुमार सानू और अलीशा चिनाई की आवाज में इश्क विश्क का ये गाना हो जाए, राइट हियर माइक से दिल तक आफरीन के साथ, इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी। बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
0: सर, वो मुझे हेल्दी डाइट शुरू करना है, कैसे करूं?
1: अरे तो सिंपल है ना, ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कर। मैं भी सबसे पहले ब्रेकफास्ट ही करता हूँ।

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot. 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: वेल देखिए मिर्ची मॉर्निंग्स पर मिर्ची घड़ी का इशारा तो सुबह के 8 बजे की तरफ हो रहा है, लेकिन मेरा इशारा हो रहा है ये अगले म्यूजिकल रिट्रीट की तरफ बाय टू फेनोमिनल सिंगर्स. या अलका याग्निक और अरिजीत सिंह का ये कॉम्बिनेशन इज बाय फार माय फेवरेट कॉम्बिनेशन अरिजीत सिंह हैज एवर डन. सो चलिए सुनते हैं गाना फ्रॉम द मूवी तमाशा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
0: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, खतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.

0: Well, my friends, after this beautiful track, here we are back again. बैक अगेन विथ बातें जो आपके काम की हो. वेल चलिए देखते हैं गोल्ड अपडेट्स क्या कहती हैं आज की.
1: गोल्ड अपडेट.
0: वेल देखिए गोल्ड आज कहता है दैट पैम्प 1 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 576 का थ्री रियल. आई थिंक सो इट्स गॉन डाउन. 5 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 2699. 10 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 5329 का थ्री रियल. वेर एज 1 ounce गोल्ड बार इज फॉर 16470 का थ्री रियल. एंड 10 तोला गोल्ड बार इज फॉर 61151 का थ्री रियल. ये थे आज के गोल्ड रेट. सोना लेना हो या ना, लेकिन भाव पे नजर ना हमेशा रहनी चाहिए. और देखिए ये जो कंसिस्टेंसी देख रहे हो आप, कंसिस्टेंटली ये गिरते जा रहा है. शायद आपके काम का हो. Why not? माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
2: Stay ahead of today's gold rates with Alpardhan Exchange, PAM's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAM gold bars
3: and earn Qatar Airways Avios today.
2: Visit our branches or download the app now.

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Burka, burka. La vieja la burka.
2: Mirchi, burka.
3: Hello?
4: Hi. You... से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
3: हेलो।
4: हाय, ये से फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4,19,83,9,83।
5: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार? अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका
3: वही मैं सुन रहा था, मतलब।
4: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
3: हाँ जी।
4: कुकड़ों को,
3: कुकड़ों को, कुकड़ों को।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पगला।
7: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मिल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सेटाइल शॉकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स, अभी कार्मिल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
8: यार शॉपिंग का प्लान है पर बजट थोड़ा टाइट लग रहा है।
9: अरे रिलैक्स, लूलू का हाफ पे बैक ऑफर सुना है।
8: हाफ पे बैक मतलब?
9: बस QAR 200 की शॉपिंग करो और QAR 100 का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली।
8: वाओ, किस किस चीज पे?
9: रेडीमेड गारमेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग और बेबी एक्सेसरीज।
8: मतलब शॉपिंग भी सेविंग भी?
9: बिल्कुल, वाउचर भी इन्हीं कैटेगरीज में रिडीम कर सकते हो, तो देर किस बात की। हेड टू लूलू, हाफ पे बैक ऑफर के साथ डबल फायदा। लूलू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
10: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
11: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
12: दोनों मिलेगा।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन
13: 89.6 FM, मिर्ची वन।

देखिए आफरीन अगर अभी आई है तो जरूर कुछ काम की बात लेकर आई होगी। एंड बिकॉज इट इज वीकेंड माई फ्रेंड्स, तो ये बात जानना तो जरूरी है क्योंकि थोड़ा सा वक्त होता है ना आपके पास वीकेंड में। वेल क्या बात कर रही है आफरीन, आई एम टॉकिंग अबाउट दी आई पे एक्सचेंज रेट्स। That's right, IPEC exchange rate ये कहते हैं, तारीख खतरियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीज 26.23। वहीं जनाब अगर पाकिस्तानी रुपीज की बात करें तो एक खतरियाल के बदले आपको मिल रहे हैं 76.11, वेयर एज बांग्लादेशी टाका आपको मिल रहे हैं 33.78। एक खतरियाल के बदले अगर श्रीलंकन रुपीज देखा जाए तो आपको मिल रहे हैं एग्जैक्टली 90.38। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, एक खतरियाल के बदले नेपाली रुपीज मिल रहे हैं 41.88। ये थे आज के एक्सचेंज रेट, घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां। हैप्पी वीकेंड दोस्तों।

तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: में जी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
3: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं। और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: गोल्ड रेट कब बढ़ेगा कब गिरेगा, फेस्टिवल शॉपिंग के टाइम ये टेंशन क्यों?
6: विद तनिष्क बेस्ट गोल्ड रेट ऑफर अपनी फेवरेट ज्वेलरी चूज करें और सिर्फ 20% एडवांस पे करके बुक कर दें। जब फाइनल परचेज कंप्लीट करेंगे तब बुकिंग डेट या बिलिंग डेट में से जो गोल्ड रेट लोअर होगा वही मिलेगा। मतलब फेस्टिव शॉपिंग प्लान कीजिए विदाउट पेइंग द फुल अमाउंट टुडे। ऑफर वैलिड अंटिल 8 नवंबर 2026 एट तनिष्क लुलु हाइपरमार्केट डी रिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी। ओपनिंग सून एट अल वतन सेंटर एंड बरवा विलेज। तनिष्क, ज्वेलरी बाइंग मेड इजियर। टीएनसी अप्लाई।
7: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
8: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musty, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
7: This initiative is driven by GWM.
9: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष, महापुरुष।
10: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स,
11: जबरदस्त ट्रैक्स।
12: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
13: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: व्हाट अ नॉस्टैल्जिक गाना है ना, अनदेखी अनजाना सा गाना, लेकिन यार सुना सुना सा काफी पहले लता जी और उदित नारायण की आवाज में। सच बताओ यार, कितने साल के बाद ये गाना सुन रहे हो आप? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। इट इज अ वीकेंड मॉर्निंग, 24th of September, थर्सडे का दिन है आज। मैंने सोचा थोड़ा सा वीकेंड स्पेशल बना दें आपके लिए। हाँ, ये वो वक्त तो जरूर है जहाँ हम और आप मिलके ये गेम खेलते हैं जिसका नाम है मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स। लेकिन आज मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स में से आपके लिए एक सरप्राइज आया है। जी, सवाल है आपके लिए, एक आवाज सुना रही हूँ मैं एक सेलिब्रिटी की, आपने गेस करना है आखिर ये सेलिब्रिटी है कौन। लेकिन दिस टाइम इट्स नॉट जस्ट गेसिंग माय फ्रेंड्स, इस बार अगर आप जीतते हो, ठीक है, देयर विल बी वन लकी विनर हु इज गोना गेट फ्रॉम किम्स हेल्थ अ डेंटल स्केलिंग के लिए, स्केलिंग का एक वाउचर कह सकते हैं, ये मिलने वाला है। सो हु इज दिस लकी पर्सन टुडे, मैंने कहा ना आपका वीकेंड जरूर मना दूंगी मैं। सो वेल, अगर सही जवाब है और लकी हो आप तो फटाफट से आंसर कीजिए और बताइए ये कौन से सेलिब्रिटी है।
1: इतनी ख्याति प्राप्त करने के बाद सब कुछ छोड़ करके आप गाँव क्यों चले गए?
2: मैं इंडस्ट्री का हूँ, मैं यहाँ आता हूँ, काम करता हूँ, वापस भाग जाता हूँ। मैं यहाँ कभी आप पार्टी में मैं कभी गया नहीं, मुझे वहाँ वो रस नहीं आता, वो मतलब है नहीं। मैं गांव खेड़े का हूँ और वहीं का रहूंगा और वहीं अच्छा लगता है हमको बड़ा।
0: कौन है ये? सवाल तो बच्चन साहब ने पूछा था, लेकिन किससे पूछा था, ये कौन से सेलिब्रिटी है ये मुझे बताइए। 5000 1896 इज माई नंबर एंड आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस, फैंटास्टिक। सो चलिए, आवाज़ सुन ली है आपने, इंडस्ट्री का बंदा है लेकिन फिर भी नहीं है, उनका कहना है कौन है ये 5000 1896। मीन वाइल कौन है जो आज लकी वाउचर जीतने वाला है किम्स हेल्थ से? एंजॉय दिस ट्रैक ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: शिल्पा राव, आपका तो हर गाना हमारा फेवरेट है, लेकिन इस बारिश में आपका फेवरेट गाना कौन सा है?
3: आई लाइक दैट सॉन्ग।

0: दोस्ती कहकर सुले मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
1: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
2: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
3: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: करण औजला की आवाज और ये गाना राइट योर ओन मिर्ची जुड़ गई है आपके साथ। सिंपली आफरीन ने सिंपल सा सवाल पूछा था क्या? बहुत मुझे तो लगा थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। वेल कोई ना, मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स यहाँ खेल रहे हैं हम और इसमें से एक ऐसी आवाज निकली थी सेलिब्रिटी की एंड यू हैड टू गेस हुज वॉइस इज दिस। लेकिन आज एक लकी विनर भी होने वाला है जिसे मिलने वाला है किम्स हेल्थ से डेंटल स्केलिंग का एक वाउचर। सो कौन है? लेट्स पहले तो मैंने डायलॉग सुन ले, उसके बाद में फिर बातें करेंगे आपके बारे में भी।
1: मैं इंडस्ट्री का हूँ नहीं, मैं यहाँ आता हूँ, काम करता हूँ, वापस भाग जाता हूँ। मैं यहाँ कभी आप पार्टी में मैं कभी गया नहीं, मुझे वहाँ वो रश नहीं आता, वो मतलब है नहीं। मैं गांव खेड़े का हूँ और वहीं का रहूँगा और वहीं अच्छा लगता है।
2: हमको बड़ा आश्चर्य, क्या कहेंगे, बहुत गर्व होता है सब देख करके।
0: All right, I just got too engrossed in this conversation seriously, और मुझे ये एक्टर बहुत अच्छे लगते हैं। What a phenomenal, finest actor our industry could ever have. 5000 1896 हमारा नंबर है, लेकिन ये कौन है ये बहुत सारे लोगों ने बताया है। Let's hear it out.
3: आफरीन सिस्टर।
0: हाँ जी बोलिए ब्रदर। हाँ ओके। हाय
4: हाय
3: आफरीन,
4: हाय जी, वेरी गुड मॉर्निंग पाटेकर एंड ही बिलोंग्स टू माय प्लेस।
0: ओह रियली?
4: ओसामा विद यू।
0: ओके, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ जवाब दिया था, पहले तो बता दूं। थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग रिस्पांस। यहाँ लेट मी जस्ट टेल द नेम्स एज फास्ट एज आई कैन। अब्दुल रहमान है, मोहम्मद यूसुफ खान, विवेक, देन आई हैव राजगोपाल नायर, देन आई हैव यहाँ पे कय्यूम पार्कर, देन आई हैव शकील, मिराज, ताहिर, कुंवर, और कौन है ये, अहाना का मैसेज आया है, देन और कौन है, और कौन है, राकेश का मैसेज है, राज का मैसेज, जाहिद, एंड द लिस्ट इज सो सो बिग। जो नाम अपना लिख लेते ना तो मैं उनका नाम फटाफट से बोल देती हूँ। सो वेल, आफ्टर ऑल दीज मैसेजेस, आज के लकी विनर इज ओसामा। यस, सो ओसामा आप जीतते हैं किम्स हेल्थ से डेंटल स्केलिंग का एक वाउचर। और आप इसी तरह से, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पार्टिसिपेट किया और ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहिए और कुछ ना कुछ कभी ना कभी किस्मत जो है लक विल बी ऑन योर फेवर साइड। ठीक है, फिलहाल के लिए तो फुरकान की फरमाइश का ये अगला गाना अरिजीत सिंह की आवाज में। एंजॉय दिस ट्रैक ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: मैं रात को लेट हो जाता हूँ, सोसाइटी के कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाते हैं। फिर सब जाग जाते हैं और मुझे लुक्स देते रहते हैं। बहुत ऑकवर्ड हो जाता है सर, क्या करूँ?
1: अरे तो एक काम कर, चोरी करने दूसरी सोसाइटी में जा, जा कुत्ते ना हो।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: Mirchi Mornings. Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot. 89.6 Mirchi One. It's hot.
1: वेल मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन तो है ही आपके साथ और आज के दिन की आखिरी आवर पर एंट्री हो गई है हमारी और मैंने सोचा चलो यार थर्सडे है वीकेंड है वाइब्स तो ऐसी लगनी चाहिए ना तो दिस आवर इज गोना बी पावर पैक्ड एनर्जेटिक गाने एंड एनर्जी की बात करें तो दलेर पाजी से ज्यादा कोई एनर्जी दे सकता है हमारे यहाँ के गानों में सो वेल कमिंग अप नेक्स्ट बोलो तारा रारा इट इज वीकेंड और फिलहाल आगे बढ़ने से पहले मिर्ची घड़ी का इशारा सुबह के 9 बजे की तरफ गाना एंजॉय करो और वीकेंड एनर्जी में जाओ चलिए
0: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर

0: वेल, आ गई है आफरीन आपको ये बताने कि वीकेंड पे अगर कुछ प्लान नहीं है बाहर जाने का तो आप क्या कर सकते हो। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। ओटीटी का सीन क्या चल रहा है जरा देखिए जरा।
1: भाभी जी एकदम लेटेस्ट डिजाइन है,
2: फ्रेश है भैया, फ्रेश है, एकदम नया आया है।
3: अरे मार्केट में नया क्या है।
0: So, देखो मार्केट में नया बहुत कुछ है, हर एक के लिए स्वाद अनुसार बहुत सारी चीजें हैं। So, अगर आपको सस्पेंस पसंद है एंड यू आर द थ्रिलर टाइप पसंद तो फिर आप परिणीति चोपड़ा का शक ट्रस्ट नो वन ये देख सकते हो, ये नेटफ्लिक्स पर है। स्टोरी इज अबाउट अ मदर जिसका बेबी किडनैप हो जाता है, वो भी 9 साल पहले, और तब से लेकर अब तक वो ढूंढती रहती है कौन है क्या है, एंड शी इज लाइक सब पे वो सस्पिशियसली शक करती रहती है। इसमें बहुत सारे लोग हैं, इसमें जेनिफर विंकेज है, ताहिर राजभासन है, सोनी रजदान, अनूप सोनी, एंड इट्स गॉट आई थिंक सो प्रीटी सॉलिड एनसेंबल कास्ट हियर। ठीक है, थोड़ा सा लाइटर चाहिए मेरे टाइप का, मतलब मुझे फैमिली वाले ड्रामा बहुत पसंद है। सो बकायती सीजन 2 ये Z5 पर है, एंड आई थिंक सो दिस इज अ हिलेरियस फैमिली ड्रामा। गाजियाबाद की कहानी है, वो होता है ना मिडिल क्लास फैमिली में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, फैमिली के क्लैशेस होते हैं और रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑल दीज थिंग्स जो मेरे ख्याल से हर घर में बकैती होती है, वो इसमें से कहीं ना कहीं 2-4 कैरेक्टर्स आपको आपके घर में भी मिल जाएंगे। सो दिस इज समथिंग यू कैन वॉच ऑन Z5। एंड वेल अगर सीरीज का कमिटमेंट नहीं चाहिए बिल्कुल मेरी तरह कि यार एक बार देख लिया, इतना 1 घंटे का वक्त है मेरे पास, उसके बाद मैं ये पूरा सीरीज देखने का नहीं इतनी कमिटमेंट मुझे इश्यूज है इससे, देन आई थिंक सो यू कैन वॉच जाकिर खान का पापा। यार देखिए ये स्टैंड अप कॉमेडी है, बट देन दिस टाइम इट इज अबाउट अ फादर सन रिलेशनशिप, तो कॉमेडी से ज्यादा आई थिंक सो इट्स गोना बी अ चाइल्डहुड का मेमोरीज की रोलर कोस्टर जरूर होगी, एंड समथिंग इमोशनल, समथिंग कॉमेडी, समथिंग जो आपका मूड जरूर लाइट कर देगा। सो वीकेंड रिमोट आपका मूड, आपका पिक भी आपकी, बताइए आपने क्या पिक किया, थ्रिलर, फैमिली ड्रामा या स्टैंड। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ ऑन मिर्ची एंड इट्स वीकेंड, तो अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज में हो जाए थोड़ा सा लाइटली एनर्जेटिक गाना ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, poskabana, sakabana. Rabana. Murka, murka. Na virtuala murka.
1: Milci, murka. Day. The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hall.
2: Hello,
3: ये हंसा से मेरी बात कराओ भाई.
2: Hello, क्या बोल रही हूँ मैं?
3: श्रीनिवास पुरी से हेड कांस्टेबल दरबील सिंह बोल रहा हूँ.
2: हाँ जी.
3: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी.
2: आई तो थी, किसी की पता नहीं किसकी थी.
3: ना आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी. आपको मालूम है आपने क्या किया है? आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे जे जे. तीन लोगों ने आपको कॉल किया है डायलर टोन सुन के. एक आदमी सीरियस है, एम्स में भर्ती है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको यही डायलर टोन मिली थी जे जे जे जे जे. ये दिल के मरीज के लिए कितनी खतरनाक है आपको ये पता है? तीन दिल के पेशेंट ने आपको फोन किया है और उनकी हालत खराब है. बेवकूफी की बात कर रही है.
2: मैंने अगर लगा रखा है, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी अगर कॉलर ट्यून उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करेगा.
3: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है? नहीं है मैं, मेरे को पता था, मैंने आपको कॉल किया, मेरा दिल हिल गया यार.
2: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं?
3: कितनी डायलर टोन है? तुम आए तो गली में आज चांद निकलता, या फिर ये लगा लीजिए, तुझे देखा तो ये
2: तो
3: जाना सनम. आपका
2: इस टाइप पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई.
3: दफा 300 ट्रिंग ट्रिंग के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह है, मैं आपको ये बता रहा हूँ. दिल्ली में इस तरह की कॉलर ट्यून नहीं लगाएंगे आप, समझिए आप.
2: ठीक है, मैं क्या करूँ बताइए ना.
3: आप क्या कर सकते हैं? आप मुझसे बहस करे जा रही
2: है. और अगर कोई बीमार है मेरे कारण से, थोड़ा ना बीमार हो
3: आपके कारण से. हंसा, मैं आपसे आखिरी बार तमीज से बात कर रहा हूँ. एक लेडी कांस्टेबल आएगी और आपको खींचते हुए लेके आएगी यहाँ पे श्रीनिवासपुरी थाने में. फिर आपको बताएंगे कि कैसे कॉलर ट्यून लगती है. आप बहस करे जा रही है मेरे से.
2: अच्छा ठीक है सर, आप जो बोलेंगे.
3: आपको कॉलर ट्यून लगानी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी कॉलर ट्यून लगाएंगी.
2: हाँ बताइए
3: आप कॉलर ट्यून लगाइए कुकड़ू को.
2: ठीक है सर, उसका मेरे को आप दे दीजिएगा. मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो.
3: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हमसा. और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुम्हारा मुर्गा बनाया है, मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है. जे जे जे.
2: यार आप लोग किसी दिन ना, मतलब कुकड़ू को.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: Need to send money home? Make it fast, make it safe, make it Alpha Bond Exchange.
5: Your trusted choice for sending money, foreign currency exchange and gold bars and coins. Visit our nearest branch or download the Alpha Bond Exchange app now. For assistance, call or WhatsApp 4453-7777.
6: Our business is our business, none of your business.
7: पर दीदी, आर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट.
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन.
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

वेल देखो कार के सफर से मैं आपको ट्रेन के सफर पर ले चली ना थोड़ी देर ही सही, सुखी पाजी की आवाज और सपना अवस्थी का साथ, 90s नॉस्टैल्जिया हिटिंग सो हार्ड, और ये गाना सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी जैसे नीचे बैठकर शाहरुख खान ऐसे हेड बैंगर स्टेप करता है ना, ओए होए मजा ही आ जाता है यार वो देखकर। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और मुझे सच सच बताओ कि आप कतर में इतने सालों से रहते हो, इतने मस्त मस्त अपने बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, इतने अच्छे अच्छे आर्किटेक्चर्स हैं, कभी रुककर दो पल उसे अप्रिशिएट किया है? लाइटली ले रहे हो ना, क्योंकि क्या है हम अगर अप्रिशिएट करें ना करें, दुनिया इसे अच्छे से नोटिस कर रही है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड विद लुसेल। थ्री ऑफ इट्स लैंडमार्क डेवलपमेंट्स हैव बीन जस्ट रिकॉग्नाइज्ड एट द 2026 इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड। क्या बात है भाई, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अब ये कौन से है मैं बता दूं, लुसेल बुलेवार्ड है एंड द सीफ, ये जीते हैं मिक्स्ड यूज बिल्डिंग्स कैटेगरी में। वाइल दोस फोर आइकॉनिक टावर्स, पता है अल सात प्लाजा जिसे हम कहते हैं, वहां से कई बार हमने ये भी देखे हैं, फायरवर्क्स भी बहुत देखे हैं, इसे अवार्ड मिला है इन द स्काई स्क्रीपर्स हाई राइज कैटेगरी। वाओ, एंड यू नो व्हाट, देयर इज वन मोर इंटरेस्टिंग डिटेल दैट अल सात प्लाजा के टावर्स 50 और 70 स्टोरेज तक राइज करते हैं, और उनका डिजाइन सिर्फ ड्रामेटिक स्काईलाइन के लिए नहीं है, इट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव फीचर्स टू डील विद कतर्स इंटेंस सन। सो नेक्स्ट टाइम जो है लुसेल बुलेवार्ड की तरफ से अगर आप ड्राइव करते हो, वो स्काईलाइन देखे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नजर उठा के देखे और थोड़े से अप्रिसिएशन करे उनके लिए जिन्होंने ये बनाया है और बहुत अच्छे से प्रिजर्व कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज आर कतर जो अवार्ड विनिंग आर्किटेक्चर जीत चुका है ऑन द वर्ल्ड स्टेज। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, और ये हाई एनर्जी गानों का सिलसिला जारी रखते हुए बिकॉज इट इज वीकेंड माई फ्रेंड। अगला गाना शाश्वत सचदेव, मधुबंती बागची और जैस्मिन संडस की आवाज में। एंजॉय दिस ट्रैक, फन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mix. Mirchi. Mirchi Stories.
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी
2: यार। तूने सुना सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
3: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं। और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
5: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
4: This initiative is driven by GWM.
6: Khatkhat!
7: Kaun hai?
6: Dave.
7: Dave kaun?
6: The way you love me. I hai mar jawa.
7: Khatkhat, who that?
0: Only on 89.6 Mirchi 1.
8: Mirchi,
0: it's hot.

0: आतिफ असलम और गुल की आवाज में ये गाना फ्रॉम द कोक स्टूडियो। एंड आज का जो ख्याल है ना आफरीन का, अपने दोस्तों के लिए है। और ये वो दोस्तों की कैटेगरी है जो बहुत दूर है, मतलब ये हमारे जिंदगी ने जो है उन्हें अलग अलग रास्ते लेकर चले गए हैं। शायद वो कोई और शहर में है, लेकिन द बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड गोज बैक डेटेड। तो उन कैटेगरी ऑफ दोस्तों के लिए विच सर्वाइव्स एवरी डिस्टेंस,
1: आफरीन की डायरी से शायरी।
0: तो अर्ज किया है कि शहर बदल गए, रास्ते बदल गए, मिलने के बहाने सारे कम हो गए। शहर बदल गए, रास्ते बदल गए, सही बात है ना। मिलने के बहाने सारे कम हो गए, पर बातें अब भी वहीं तक जाती है। दूर होकर भी कुछ यारियां पास रह जाती है। ना रोज मिलना जरूरी, ना रोज बात होना, है ना। ना रोज मिलना जरूरी, ना रोज बात होना, बस दिल में एक दूसरे का वही खास होना। फासले चाहे कितने भी दरमी आ जाए, फासले चाहे कितने भी दरमियां आ जाए, सच्ची यारी में कहां कभी दिल जुदा हो पाए। बताइए, ये जो शायरी थी आज की, जो ये कहा, जो ये अल्फाज थे, ये आपको किसकी याद दिलाए। आई एम श्योर एक चेहरा तो आपके जहन में जरूर आया होगा, तो बस उसी को आपके जहन में रखे रहिए थोड़ा टाइम और ये अगले गाने में और ज्यादा एंजॉय कीजिएगा। के की आवाज में व्हाट कैन बी अ बेटर सॉन्ग देन दिस फॉर फ्रेंडशिप। एंजॉय दिस ट्रैक माइक से दिल तक आफरीन के साथ। इट्स हॉट

0: है।
1: अच्छा वो झड़ी है क्या? मैं हमेशा लगी आज सावन की फिर वो छड़ी है गाती थी अभिजीत सावंत। थैंक यू फॉर एजुकेटिंग अस। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
4: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
5: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के? कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
7: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में लव हुआ मुझे आज के दिन से। यार ये वीकेंड है और हर बात में मेरे वीकेंड का जिक्र तो होता ही है। सो वेल, अभी जाते जाते मैं कहने तो कुछ और आई थी, लेकिन अब इंस्टाग्राम देखते देखते ना अब ये कुछ कहना कुछ और है मुझे। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफ्टरनून है आपके साथ। और इंस्टाग्राम थोड़ी देर मैं अभी जस्ट स्क्रोल ही कर रही थी कि मेरी नज़र पड़ी ऑन द फर्स्ट लुक ऑफ लव एंड वॉर। व्हाट इज दिस लव एंड वॉर बाय द वे? वेल, संजय लीला भंसाली की दिस न्यू मूवी और रणबीर कपूर वाला फर्स्ट लुक इज फाइनली आउट। एंड सडनली आई रियलाइज दैट यार 4 साल हो गए भंसाली साहब की मूवी देखकर। हाँ, इट वॉज गंगूबाई काठियावाड़ी 2022 में आई थी इज लास्ट डायरेक्टोरियल फिल्म। उसके बाद कहाँ है। एंड भंसाली की फिल्म ना एक अलग ही सिनेमैटिक वोकैबुलरी होती है। हम दिल दिच के सनम, देवदास, ब्लैक, रामलीला, बाजीराव मस्तानी बीइंग माय अल्टीमेट फेवरेट, पद्मावत, गंगूबाई, देखिए स्टोरीज इतनी अलग होती है, बट दैट ग्रैंडियर, दैट्स लाइक अ विजुअल पोएट्री, लार्जर देन लाइफ फ्रेम्स, म्यूजिक, इमोशन, सब इतने हाइटेंड होते हैं ना, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड इफ यू आर अ भंसाली फैन यू विल डेफिनेटली रिलेट टू इट। एंड नाउ कमिंग बैक टू दिस मूवी, रणबीर कपूर है, आलिया भट्ट है एंड विकी कौशल है। व्हाट एन एनसेंबल यार। वेल, लव और वॉर में आपको ये नजर आएंगे, एन एपिक रोमांस सेट अगेंस्ट अ बैकड्रॉप ऑफ वॉर। द मेकर्स आर कीपिंग मच ऑफ द स्टोरी अंडर द रैप्स। हमें उसके बारे में कुछ इतना पता नहीं है, लेकिन द फिल्म इज नाउ इन पोस्ट प्रोडक्शन और देखते हैं इसकी जो रिलीज है ये कही जा रही है कि ये 21st of January को होने वाली है। वेट थोड़ा सा लंबा है, लेकिन यार मुझसे रहा नहीं गया क्योंकि भंसाली की मैं वन ऑफ द फैंस हूँ। लाइक बहुत सारे डायरेक्टर्स कि मुझे पसंद है मूवी, बट भंसाली बीइंग वन ऑफ देम। सो वेल, इसी के साथ टाटा बाय बाय सायोनारा हो गई मेरी बातें खत्म, और आपका जो दिन है वो खत्म नहीं हुआ है अब तक। मॉर्निंग तो खत्म हो ही चुकी है, बस दिन भी अच्छे से गुजर ही जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपका वीकेंड फैंटेबुलस रहे और आप खुश रहे। सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है जिंदगी में खुश रहना। चलिए अपना ख्याल रखिएगा और माइक से दिल तक आप लेना चाहेगी अलविदा, इजाजत है सुते रहेगा मिर्ची के साथ।

पीछे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: यार मुझे नींद नहीं आती, क्या करूं?
1: इट्स सो सिंपल मैन, जस्ट डोंट वरी, पार्ट टाइम वॉचमैन का काम कर लो, एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी।
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में बज रहे हैं 10। आप सुन रहे हैं मिर्ची वन कतर
2: टाइम चेक
3: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
4: इंडी पॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
5: दिवाली के बाद से लेकर न्यू ईयर्स तक अब सिर्फ हॉलिडे मोड ऑन रहेगा। On this show, हर हफ्ते टॉप 10 गाने। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द मिर्ची इंडी पॉप 10, ओनली शो ऑन मिर्ची जहां पर हम पूरे हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट इंडिपेंडेंट पॉप गाने आपके लिए पेश करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी, फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर, मेरा हैंडल इज @rjkanika। हफ्ते के टॉप 10 गानों के साथ साथ यहां पर हम बहुत सारे आर्टिस्ट से बात करेंगे, कुछ अकूस्टिक वर्जन सुनेंगे, 90s के इंडी पॉप की तरफ जाएंगे। इस हफ्ते 3 नई एंट्रीज हैं, बहुत सारे सरप्राइजेस, तो सीधे शुरुआत करते हैं हफ्ते के काउंटडाउन से। पहला गाना यानी कि गाना नंबर 10 पर ही इस हफ्ते एक नई एंट्री है। बहुत टाइम बाद सुप्रा ने एंट्री मारी है, दैट इज सुकृति प्रकरण प्रकृति कक्कड़। उनका गाना दोबारा इज ऑन गाना नंबर 10 एंड उसके बाद श्रुति रानी की आवाज में हाय हाय ये मजबूरी ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन मिर्ची इंडी पॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
3: नंबर 10।

0: Mirchi. Escabana, puscabana, sacabana. Rambana. Murga, murga. La vieja la murga. Mirchi, murga.
1: हेलो विनीत जी।
2: हाँ जी
1: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर। क्या हाल चाल है, शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
2: सही हाँ, मैं तो चल रही है।
1: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने हैं बैंड के लिए?
2: 7:30 बजे तक।
1: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई हमारे, जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं।
2: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना, बचा जाएगा?
1: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाला एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
2: पागल हो गए हो क्या, क्या बजाएगा अकेला वो?
1: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये नहीं, ये अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
2: मैं क्या बात करूं यार, अकेला क्या बजाएगा?
1: नहीं वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए। हाँ विनीत जी मजा आया, ये मिस्टर थॉमस ये
2: क्या बजा रहे हैं, ये सुना आपने?
1: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर। मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चढ़ रहे हैं सर?
2: मैं घोड़ी तो चढ़े जाऊंगा यार।
1: अच्छा सर मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चढ़ेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चढ़ने वाले चढ़ाएंगे।
2: हेलो हेलो,
1: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
2: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये?
1: विनीत जी मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, अभी पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर। हाँ
2: अरे कॉफिन ऑफिन कर तो यहाँ क्यों लेके आए तुम?
3: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मत मानिए।
2: अच्छा भैया आप मेरे
4: के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: खटखट बनता
6: बनता हूँ।
7: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को।
6: खटखट हू दैट
4: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। It's hot.
8: Indie Pop 10 Kanika ke saath on Mirchi
4: number

0: जुबिन नौटियाल की आवाज में दिस सॉन्ग वॉज कॉल्ड मीठी मीठी. पिछले हफ्ते से दो पोजीशन ऊपर जंप करके दिस सॉन्ग वॉज ऑन गाना नंबर 7. काउंटडाउन पर गाना नंबर 8 पर ममता शर्मा समीर खान की आवाज में था तुझे देखे मेरी आंखें, विच वॉज अ न्यू एंट्री ऑन नंबर 8.
1: इंडी पॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑन द शो कॉल मिर्ची इंडी पॉप 10. मैं हूँ आपकी होस्ट आरजे कनिका. एट आरजे कनिका मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, सो आके कनेक्ट करो, बिंदास फॉलो कीजिए. आई होप यू एंड योर फैमिली हैड अ ग्रेट दिवाली. दिवाली हमारे यहाँ एक दिन या दो दिन का फेस्टिवल नहीं है, इट्स अ वीक लॉन्ग अफेयर. पूरे हफ्ते जोरदार सेलिब्रेशन चली, बहुत सारी दिवाली पार्टीज हुई, सोशल मीडिया वॉज फ्लडेड विद एथनिक पिक्चर्स, दिवाली सेल्फीज, दिवाली प्लेलिस्ट. एक ऐसी आवाज जो हिंदुस्तान में आज जो भी प्लेलिस्ट बने उसमें जरूर शामिल होती है, वो है जुबिन नौटियाल की. पिछले साल का सबसे स्ट्रीम गाना जुबिन की आवाज में था. मिर्ची इंडी पॉप के जरिए भी बहुत सारे लोग उन्हें चाहते हैं, तो यहाँ पर आई गॉट अ सरप्राइज फॉर यू, एन अनहर्ड अनप्लग्ड मिर्ची वर्जन ऑफ फ्यू सॉन्ग्स ओनली इन जुबिन नौटियाल की आवाज. अपने रेडियो सेट की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए एंड एंजॉय.

0: नेहा कक्कड़ की आवाज में, गाने का नाम है ओ साजना, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे दिस वीक ऑन गाना नंबर 5।
1: इंडी पॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: नेहा कक्कड़ म्यूजिक इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जिनका नाम लेते ही ना लोगों के ओपिनियंस डिवाइड हो जाते हैं। We're going to talk about it, but usse pehle, hello and welcome. This is the Mirchi Indie Pop 10, the only show on Mirchi, jahan par pure hafte ke top 10 hottest independent pop gaane aapko sunne ko milte hain. Main hoon aapki host RJ Kanika. At RJ Kanika is mere Instagram ka handle. So do connect with me. Koi gaana recommend karna ho, bindaas aake hit me up. Neha Kakkad ke fans khud ko Nehearts bulate hain. Hashtag Nehearts. Aur internet par aapko har teesra insaat ek Nehu Heartian milega. Is kadr ki mohabbat karte hain log Neha Kakkad. एंड दूसरी एक साइड ऐसी है जो नेहा कक्कड़ को खुल के ट्रोल करती है इंटरनेट पे। दीस पार्टी ट्रैक्स, रिक्रिएशंस, इन सब के बीच में हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं दैट नेहा कक्कड़ एक ऐसी आवाज है जिन्होंने हमें कुछ बहुत सॉफ्ट एंड मेलो गाने भी दे रखे हैं। आई नो ये इमेजिन करना इम्पॉसिबल है, बट नेहा कक्कड़ वॉज द वॉइस बिहाइंड मिले हो तुम हमको।

दिस सॉन्ग वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर नेहा कक्कड़. 6 साल पहले नेहा कक्कड़ ने ये रिप्राइज वर्जन अपलोड किया था एंड इट हैज क्रॉस मोर देन 1.2 बिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब. मिर्ची इंडी पॉप 10 के खजाने से आज बहुत सरप्राइजेस निकल रहे हैं एंड ऐसा ही एक सरप्राइज नेहा कक्कड़ की आवाज में एक सॉफ्ट रोमांटिक पंजाबी सॉन्ग जो उन्होंने स्पेशली हमारे लिए गाया था इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू.

0: बंदी का अंदाज नेहा कक्कड़ वाला ही है. किसी भी गाने को नेहा का गाना कैसे बनाना है, दैट्स व्हाट शी डज बेस्ट. हार्डी संधू का गाना सोच का रेंडिशन बाय नेहा कक्कड़ ओनली ऑन मिर्ची इंडी पॉप 10. एट आरजे कनिका पर आगे स्टे कनेक्टेड विद मी. एक क्विक इंडी पॉप क्विज दे रही हूँ आपको. नेहा कक्कड़ का पहला बॉलीवुड गाना जो था उसमें दीपिका पादुकोण थी फॉर अ मूवी जिसमें सैफ अली खान भी थे. कौन सा था वो गाना? एट आरजे कनिका पर आके जल्दी जल्दी बताओ. नाउ मूविंग ऑन विद द काउंटडाउन. अगले वाला गाना सिद्धार्थ कश्यप मोहम्मद इरफान की आवाज में दिल आवारा पिछले हफ्ते से दो पोजीशन ऊपर ऑन गाना नंबर 4. एंड प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू इज हिमेश रेशमिया का गाना. गाने का नाम है दिल डिस्को करे. इट्स अ न्यू एंट्री ऑन गाना नंबर 3. यू लिसनिंग टू मिर्ची इंडी पॉप 10. बंदी का नाम है कनिका.
1: इंडी पॉप 10 नंबर 3.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: The late Irfan Khan से एक बार पूछा गया कि कहाँ की बारिश आपको सबसे ज्यादा पसंद है? Is it Delhi? Is it Mumbai?
3: उसका मजा सिर्फ राजस्थान में है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ बरसात जो है देर से होती है। वहाँ जो है सावन को सेलिब्रेट किया जाता है, सावन भादो जो कहते हैं, यू नो, फसल भी कटती है और झूले लगते हैं। राजस्थान में जो है बरसात में भीगने का और बरसात का जो मजा है वो बहुत अलग है।
2: ऐसा एक दिन नहीं जाता जब इरफान खान का ख्याल नहीं आता। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिलिंद गावन यो यो हनी सिंह की आवाज में पेरिस का ट्रिप आपके घरों तक पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे दिस वीक ऑन गाना नंबर 2
1: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: You're listening to Mirchi Indie Pop 10. मैं हूँ आपकी होस्ट RJ Kanika. Connect with me. Follow me. Instagram पर मेरा handle is @RJKanika. एकदम free है. यहाँ पर इस show पर हम हफ्ते के top 10 hottest independent pop गानों की गिनती करते हैं. 9 गाने हो चुके हैं. The king of the countdown बाकी है. But उससे पहले it's time for us to go back to our classics.
1: Kanika's cassette classic.
0: And the song we feature this week is
2: Channa Bekhariya Jaade Bola Bekhariya Jaade
0: Kunal Ganjwala ki awaaz mein Channa Ve Ghar Aa Jaave An evergreen song Gaane do type ke hote hain Pehle jisme music lyrics ke saath Dusre jisme music se vibe ke liye And then there are classics which are actually a mix of both This track by Kunal Ganjwala is everything indie, everything pop So apni radio set ki volume bada lije On my cassette classic this week This is Channa Ve playing right next for you Only on Mirchi Indie Pop 10 Bandhi ka naam hai Kanika Enjoy
2: Channa Ve

0: कुणाल गांजेवाला की आवाज में. दिस वॉज चन्ना वे ऑन माय कैसेट क्लासिक दिस वीक. अपने सजेशंस भेजते रहिए, अपने रिकमेंडेशंस भेजते रहिए कि यार वो वाला गाना भी तो था. एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम इज वेयर यू विल फाइंड मी. एंड नाउ जो पूरा माहौल बन चुका है, लेट्स मूव ऑन टू द न्यू मेरु उनो सॉन्ग ऑफ दिस काउंटडाउन. नेहा कक्कड़ और रोहन प्रीत की आवाज में, गाने का नाम है बारिश में तुम. एक बार फिर से एक पोजीशन ऊपर उठ के ये गाना बन चुका है गाना नंबर वन. एंड इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन मिर्च इंडी पॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: इंडी पॉप 10 नंबर वन.

0: Gen, Kanika Kasat on Mirchi.
1: Hello, Mirchi Helpline.
2: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
1: सर, मैं जब भी घर आता हूँ ना, पापा जाग रहे होते हैं। वो सोते ही नहीं है, तो क्या करूँ?
2: अच्छा, पापा जाग रहे होते हैं, तो एक काम कर, चोरी करने दूसरों के घर जा बच्चू।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
3: कुछ तो बदल गया है बॉलीवुड में. पहले फिल्म में सुपरस्टार हो तो एक्साइटमेंट अपने आप आ जाती थी. बड़ी फिल्म हो तो थिएटर जाना ऑलमोस्ट कंपल्सरी था. लेकिन आज नाम बड़ा हो सकता है, फिल्म को फिर भी खुद को प्रूव करना पड़ता है. शायद बॉलीवुड बदला है, लेकिन मुझे लगता है असली बदलाव हम में आया है. हम सब अब सिर्फ स्टार्स को नहीं देखते, सिर्फ स्केल से इंप्रेस नहीं होते, सिर्फ नॉस्टैल्जिया के नाम पर टिकट नहीं खरीदते. हम डिसाइड करते हैं कि क्या देखना है, क्या सुनना है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है. शायद इसलिए बॉलीवुड को समझने का सबसे ऑनेस्ट तरीका उसकी अनाउंसमेंट नहीं, उसकी ऑडियंस को सुनना है. और हम वही करने वाले हैं. हाय, दिस इज द मिर्ची टॉप 20. माय नेम इज सुरेन सुंदरम. एंड शुरू करते हैं उस गाने से जो एक सिंपल बात याद दिलाता है. हाइप खत्म हो जाती है लेकिन म्यूजिक रह जाता है. शान एंड सुखविंदर सिंह की आवाज में दी ओजीज, दिस इज हैवान का गाना रंगियारा, कंपोज बाय प्रीतंदा, एंड इट्स द फर्स्ट सॉन्ग हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20.
4: नंबर 20.

कभी नोटिस किया है कुछ गाने एक ही दुनिया के नहीं लगते। माशूका को जरा ध्यान से सुनो, एक साइड पर मेलेडी है और दूसरी तरफ देयर इज दिस प्रोडक्शन, दोनों की लैंग्वेजेस काफी अलग है फिर भी गाना एक ही आइडेंटिटी रखता है। इसे कहते हैं जॉनर हाइब्रिड। सिंपल भाषा में मेलेडी एक दुनिया से होती है और बीट दूसरी दुनिया से, और जब दोनों सही हाथ में मिलते हैं तो तीसरी दुनिया पैदा हो जाती है।

0: बेशरम रंग एफ्रोबीट और लैटिन इलेक्ट्रॉनिक टेरिटरी में चली जाती है, लेकिन शिल्पा राव की आवाज यार, वो तो ऐसा लगता है कि उनकी आवाज में गजल वाली नजाकत है। एंड देन देयर इज दिस,
1: क्योंकि

तुमियों में मेलोडी एक हिंदी गजल की तरह दिल से निकलती है और पीछे पियानो और स्ट्रिंग्स उस इमोशन को ऑलमोस्ट एक वेस्टर्न क्लासिकल स्केल दे देते हैं। एक तीसरा गाना भी है कि आपको अच्छी तरह मालूम है।

0: चन्ना मेरेया, सूफी मेलेडी, उर्दू अल्फाज, लेकिन गिटार और ड्रम्स उस हार्ट ब्रेक को आगे ढकेल रहे हैं। यानी जॉनर बदल रहा है, इमोशन नहीं। और अब विशाल मिश्रा इसी गेम को और ज्यादा तोड़ रहे हैं। अ सोलफुल हिंदी मेलेडी, बट इट्स गॉट ईडीएम, इट्स गॉट डबस्टेप, इट्स गॉट रैप, यानी कि तीन अलग अलग म्यूजिकल वर्ल्ड्स एक ही गाने में। जॉनर की बाउंड्रीज म्यूजिशियन बनाते हैं, म्यूजिक खुद नहीं। ये है वक्त फ्रॉम द फिल्म टॉक्सिक, नंबर 18 पर डेब्यू विशाल मिश्रा और कौशल किशोर की कोलैबोरेशन।
1: नंबर 18

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची
2: हेलो हाँ जी बोलिए
3: क्या बोलूँ जी
2: आप बोलिए ना
3: कॉल आपने किया आप बोलिए
2: कॉल मैंने किया है हेलो
3: अरे बोलो भाई कॉल तुमने किया बोलो क्या हुआ
2: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार मैं यहाँ सो रहा हूँ आपने मुझे कॉल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार आपने नंबर मेरा डायल किया है मेरे घर बेल बजी है यार
3: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा अरे फोन मैंने नहीं किया यार
2: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार मेरे यहाँ भी बेल बजी है
3: नींद में है क्या
2: मैं नींद में ही था आपने डिस्टर्ब कर दिया मैं देख रहा हूँ नंबर
3: क्या बेल मेरे यहाँ बजी है
2: आ जाते हैं उठ के मैं तो फोन काट रहा हूँ फोन रखी तेरे हेलो हाँ बताइए
3: मेरी जेब में फोन रखा होगा वो बटन दबा होगा बार बार
2: बात करनी है तो बात कर लीजिए आप दो बार फोन कर चुके हैं आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है आप बताइए मुझे प्लीज क्या काम है
3: हेलो
2: फिर कोई यार आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार मैं आपसे प्यार से बात करे जा रहा हूँ तो आप उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं
3: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम मैं फोन नहीं कर रहा
2: तो आप गाड़ी चलाइए नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए आप अपना काम करिए फोन मत करिए मुझे कम से कम यार फोन मत करिएगा बस यहाँ पे
3: फोन नहीं कर रहा अभी
2: आप देखिए बदतमीजी से बात मत करिए आप समझ गया मैं यहाँ से लेफ्ट चाटा मार दूंगा बता रहा हूँ मैं यहाँ से हटा मेरे चप्पल लेके आ रहा ये मेरे हाथ में चप्पल है मैं बता रहा
3: हूँ
2: मैं पता नहीं कहाँ से आता है मैं सो रहा हूँ यहाँ पे फोन
3: आराम कर दिया तुम
2: जीना यहाँ से इस बार अगर कर दिया ना बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा चप्पल है मेरे हाथ में
3: फोन आ रहा है मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले
2: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ मेरी बात सुनिए अभिषेक मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ तुम रेडियो मिर्ची पे हो तुम्हारी आवाज़ सारी बाहर आ रही है तुम मुर्गा बन गए हो ये सारी कॉल्स मैंने करी थी
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी जा बेटा जा
6: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल
7: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: 89.6 FM Mirchi 1 It's hot.

हमारी प्रॉब्लम इमेजिनेशन की तो कभी थी ही नहीं। इंडिया में कहानियों की कमी नहीं है, ऐसे हीरोज जो उड़ते हैं, ऐसे योद्धा जिनके पास इम्पॉसिबल शक्तियां हैं, ऐसे वेपन्स, ऐसे अस्त्र जो पूरी दुनिया बदल सकते हैं, गॉड्स, डीमंस, शेपशिफ्टर्स, इमॉर्टल्स। फिर भी बॉलीवुड के सुपर हीरोज की दुनिया में जाते ही जादू थोड़ा कम हो जाता है यार। मेन स्ट्रीम सिनेमा में सिर्फ दो ही फिल्म्स ऐसी याद आती हैं जो इस जॉनर को सच में क्रैक कर चुकी हैं। एक 1987 ऑलमोस्ट 40 साल पहले आई फिल्म मिस्टर इंडिया एंड देन ऋतिक रोशन की कोई मिल गया, और दोनों की एक बात कॉमन है, उन्होंने फिल्म की शुरुआत सुपर हीरो के साथ नहीं की, इंसान के साथ की। पहले हम उनके साथ जुड़े, फिर उनकी दुनिया में कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी हुआ, एंड शायद यही बॉलीवुड बार बार फिसल जाता है। हम सुपर हीरो बनाते वक्त सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम पहले डिजाइन करते हैं, उसकी यूनिवर्स बाद में। और बॉलीवुड का दूसरा प्रॉब्लम शायद यही है कि हम सुपर हीरो फिल्म को भी कभी कभी अपनी एग्जिस्टिंग मसाला वाली ग्रामर से लिखने लगते हैं। हीरो है तो रोमांस होगा, रोमांस है तो गाना होगा, विलेन है तो बड़ा एक्शन होगा, और सब कुछ बड़ा नहीं चाहिए क्योंकि बिगर इजंट ऑलवेज बेटर। और इसीलिए आमिर खान, आर बाल्की और साजिद नाडियाडवाला एक सुपर हीरो फिल्म बनाना चाहते हैं, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड, एंड दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग क्योंकि आमिर एक ऑब्वियस सुपर हीरो नहीं है, बाल्की ऑब्वियसली एक सुपर हीरो फिल्म मेकर नहीं है। तो सवाल ये नहीं है कि आमिर खान सुपर हीरो बनेंगे कि नहीं, सवाल ये है कि क्या बॉलीवुड आखिरकार एक ऐसी सुपर हीरो दुनिया बना सकता है जो बॉलीवुड की फिल्म ना लगे जिसमें सुपर हीरो हो। शायद इसी का जवाब हमारी सबसे पुरानी कहानी के पास है। बीच में वैसे एक गाना है नंबर 14 पर कॉल्ड साड़ी फ्रॉम धमाल 4, लेकिन उसको जरा साइड में करते हैं क्योंकि जिस फिल्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो सिर्फ एक फिल्म नहीं है, वो हमारी सबसे बड़ी कहानी है, रितेश तिवारी की रामायण। और जिस कहानी में भगवान है, राक्षस है, बानर है, अस्त्र है, और वो सफर है जो हजारों सालों से हमारी कल्पना के हिस्से बने हुए हैं। उसका पहला म्यूजिकल क्लिम्स किसी सुपर हीरो एंथम की तरह नहीं है, वो एक प्रार्थना की तरह है। एआर रहमान के म्यूजिक में अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज। नंबर 13 पर यह है जय जय राम।

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
4: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं। और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: खट खट। अकबर।
7: अकबर हूँ।
6: अरे अकबर बता दिया है, बार बार नहीं ना बता पाएंगे।
7: खट खट हू दैट।
5: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। इट्स हॉट।
8: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 10।

0: यार कभी कभी किसी फिल्म को देखते हुए ना एक अजीब सी चीज होती है, फिल्म अच्छी लगे या बुरी लेकिन उसके कैरेक्टर्स से एक रिश्ता नहीं बन पाता है, एक अपनापन फील ही नहीं होता है। एंड कॉकटेल के साथ मेरे लिए कुछ ऐसा ही हुआ था। देखो फिल्म की कहानी को लेकर बहुत ओपिनियंस थे लेकिन मेरे लिए जब मैं फिल्म के एक्टर्स के इंटरव्यू सुन रहा था यार, वो कनेक्शन नहीं बन पाया था। उनकी बातचीत ज्यादातर इंग्लिश में हुआ करती थी एंड शायद इसी वजह से पता नहीं क्यों स्क्रीन पर जब मैं उस दुनिया के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा था तो एक फासला सा महसूस हो रहा था, क्योंकि लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं होती, भाषा हमारी कल्चर होती है, हमारी मेमोरी होती है, हमारी इंस्टिंक्ट होती है। एक ऐसे एक्टर हैं जिनको मैं बहुत मानता हूँ, नाम है उनका जयदीप अहलावत, और उन्होंने इस चीज को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन शेयर की थी।
1: मैं सरप्राइज्ड हो जाता हूँ, मैं मजाक नहीं करता हूँ, मैं इतना सरप्राइज्ड हो गया जब मुझे पहली बार किसी को देखा कि एक्टर हिंदी नहीं पढ़ सकता, लिखी हुई हिंदी नहीं पढ़ सकता, अगर वो देवनागरी में लिखा गया है नहीं पढ़ सकता उस स्क्रिप्ट। एंड मुझे लगा कि इससे बुरा नहीं हो सकता, ऐसे ही नॉर्मल नहीं, नहीं कोई आ गया बेचारे किसी को ऐसा कहीं केरला से, नहीं नहीं हिंदी भाषी प्रदेशों से निकले हुए लोग और वो हिंदी की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकते हैं प्रॉपर, हर दूसरे वर्ड पे फंबल है, हर दूसरे वर्ड, क्योंकि उनको सिर्फ सुनने की आदत है, रोमन में दे दोगे तो पढ़ लेंगे।
0: देखो मुझे लगता है कि जयदीप भाई की बात का असली वजन देवनागरी पढ़ पाने या ना पढ़ पाने में नहीं है, सवाल ये है कि अगर आप हिंदी सिनेमा के एक एक्टर हो और हिंदी आपके लिए सिर्फ वो भाषा है जो आपको डायलॉग कोच या स्क्रिप्ट से सीखनी पड़ती है, तो भाई कुछ ना कुछ रास्ते में जरूर छूट गया है। और इसलिए मुझे कुणाल खेमू जैसे एक्टर्स काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं। कुणाल ने खुद इंग्लिश और हिंदी के इस डिवाइड पर बहुत कुछ बोला है, आप यूट्यूब पे जाके कोई भी उनका इंटरव्यू देख लो, उनकी हिंदी लेकिन अगर आप सुनोगे तो वो ट्रांसलेटेड नहीं लगती, वो यार अपनी लगती है। शायद इसलिए उनकी आने वाली फिल्म वाइब, उसमें उनके कैरेक्टर्स की बातचीत में वो फेमिलियरिटी है, वो फीलिंग है कि ये लोग किसी फिल्म के डायलॉग नहीं बोल रहे, ये लोग तो वैसे ही बात करते हैं। और अब उसी एनर्जी को कुणाल खेमू थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं। नंबर 9 पर डेब्यू कर रहा है वाइब का टाइटल ट्रैक कंफ्यूजन, इरफाना हमीद और शुभम सुपन खिलरी की आवाज में, दिस इज ऐसी मेरी वाइब। नंबर 9।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: अनु मलिक, आपको देख के लगता है कि जब आप पैदा हुए ना आपने पहले मम्मी कहा ना पापा, आपने कहा होगा देखो बारिश हो रही है। But really, tell us how old were you when you made this song?
4: What I was 25 or something. It was raining cats and dogs. Waterfall से पानी गिर रहा था. सारे बादल नीचे आ चुके. And उस बीच में ना I saw the little train coming out. देखो बारिश हो रही है. देखो ना देखो it's raining, it's raining, it's raining.
3: अब Twinkle Twinkle Little Star और बाबा Black Sheep के साथ में ये वाला गाना तो ऐड कर ही लेना चाहिए स्कूल्स में, है ना अनु मलिक? आप सुन रहे हैं मिर्ची, It's out.
1: Bollywood Bol Dal.
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bol Dal. Only on Mirchi, It's Hot.
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
6: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 2।

0: नंबर दो पर आते ही एक इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस हो गया है। एक तरफ वो फिल्म है जिसे रणवीर सिंह के करियर का टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ नंबर वन पर फिर से वही गाना है जो एक ऐसी फिल्म से आया है जिसके बारे में शायद उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि वो इमरान हाशमी के करियर की टर्निंग पॉइंट बन जाएगी। आई एम टॉकिंग ऑफ द फर्स्ट आवारापन। इमरान का जो अर्ली करियर था ना, वो काफी इंटरेस्टिंग था। फिल्में चल रही थी, गाने भी चल रहे थे, ऑडियंसेस भी आ रही थी, लेकिन जो क्रिटिक्स हैं उन्हें इमरान हाशमी में एक्टर से ज्यादा एक इमेज नजर आती थी। किसिंग सीन्स आए तो सीरियल किसर का टैग लग गया, लेकिन फिर आई आवारापन। देखो फिल्म नहीं चली ये सब जानते हैं, लेकिन इमरान के लिए कुछ बदल गया। उन्होंने पहली बार अपने आप को उस इमेज से बाहर देखना शुरू किया, और वो खुद इस जर्नी को कुछ इस तरह याद करते हैं।
1: मेरा कभी नहीं था कि मुझे क्रिटिक्स को अपीस करना है। मुझ में कहीं एक चाह थी कि यार अभी बस हो गया, ये प्रोड्यूसर्स को ज्यादा ही दे हैव एक्सप्लॉइटेड द फैक्ट दैट देयर इज इमेज। एंड हाँ, फिल्में चल रही हैं, बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी मिल रही है, बट फ्रॉम इनसाइड आई नो लाइक हिम, सो इट वाज लाइक अ फायर टू काइंड ऑफ आल्सो एक्सप्लोर अनदर फैसेट ऑफ एक्टिंग, जहाँ देयर कैरेक्टराइजेशन हो। एंड देन थैंकफुली वी स्टंबल्ड अपॉन दिस व्हिच टच्ड अपॉन सम रियली सेंसिटिव थिंग्स, यू नो, losing someone you love. So a very painful moments, and it kind of satiated me as an actor.
0: यार कभी-कभी एक्टर को करियर बदलने के लिए ब्लॉकबस्टर नहीं चाहिए होती है, उन्हें सिर्फ एक ऐसी फिल्म चाहिए होती है जो उन्हें ये प्रूव कर दे कि वो और भी कुछ कर सकते हैं। एंड आवारापन ने इमरान में वो जज्बात जगाए। उसके बाद डायरेक्टर्स आए, कैरेक्टर्स आए, और धीरे धीरे वो एक्टर भी सामने आया जो उस इमेज के पीछे
1: थिंग्स, यू नो, लूजिंग समवन यू लव, सो ए वेरी पेनफुल मोमेंट्स, एंड इट काइंड ऑफ सेशिएटेड मी एज एन एक्टर।
0: यार कभी-कभी एक्टर को करियर बदलने के लिए ब्लॉकबस्टर नहीं चाहिए होती है, उन्हें सिर्फ एक ऐसी फिल्म चाहिए होती है जो उन्हें ये प्रूव कर दे कि वो और भी कुछ कर सकते हैं। एंड आवारापन ने इमरान में वो जज्बात जगाए। उसके बाद डायरेक्टर्स

0: कुछ गाने खत्म हो जाते हैं, साथ में कुछ कहानियां, लेकिन कुछ आवाजें वो कहीं नहीं जाती। आज की कहानी मैं यही खत्म कर रहा हूँ। गाने चलते रहेंगे, यादें भी बनती रहेंगी, लेकिन हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट ऑन द मिर्ची डॉट 20, दिस इज सुरेन, ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: ये जब से मुझे चश्मा लगा है नंबर बढ़ता ही जा रहा है, इसे कैसे रोकूं?
1: अरे सिंपल है ना मामू, पहली फुर्सत में चश्मा निकाल के साइड में रख दो ना, प्रॉब्लम सॉल्व।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ, और चांद और आशिकी को ना हमेशा एक दूसरे से जोड़ के देखा गया है, रोमांटिसिज्म के एक चश्मे से देखा गया है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि रोमांटिसिज्म खत्म हो जाता है अगर पेट में रोटी ना हो। शकील आजमी साहब का एक बड़ा खूबसूरत शेर है इस बात पे, लिखते हैं, भूख में इश्क की तहजीब भी मर जाती है, भूख में इश्क की तहजीब भी मर जाती है, चांद आकाश पे थाली की तरह लगता है। आय हाय, रियलिटी, रोमांटिसिज्म और ऐसी कई सारी दुनियाओं को एक्सप्लोर करें हमारी मिर्ची महफिल में, सिर्फ अपने ताशी के साथ। इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virpa, la burga.
1: Mirchi, burga. Hello?
2: Hi. You... से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
1: हेलो।
2: हाय, ये से फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4,19,83,93।
3: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार, अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका मुर्गा
1: तो वही मैं सुधर रहा था, मतलब लगा।
2: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
1: हाँ जी।
2: कुकड़ों को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सेटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स, अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
6: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
7: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
6: This initiative is driven by GWM.
8: खट खट।
9: कौन है?
8: अज्जू।
9: अज्जू कौन?
8: अज्जू ना आए बाल माँ, सावन बीता जाए। होए।
9: खट खट, who that?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ, और ऐसा जिंदगी में शायद आपके साथ भी हुआ हो।
2: मिर्ची महफिल पे लव्स आजकल
1: कि जब आप जिससे प्यार करते थे वो शहर में कहीं टकरा जाए आपसे, और माहौल कुछ ऐसा हो कि दोनों एक दूसरे को नजरअंदाज करें। हाँ जी, ऐसा ही जब हाल में मेरे साथ हुआ, तो घर वापस लौटते वक्त गाड़ी में बैठे हुए जहन में जावेद अख्तर साहब की गजल के शेर तैर रहे थे कि याद उसे भी एक अधूरा अफसाना तो होगा, याद उसे भी एक अधूरा अफसाना तो होगा, कल रस्ते में उसने हमको पहचाना तो होगा। डर हमको भी लगता है रस्ते के सन्नाटे से, लेकिन एक सफर पर ऐ दिल अब जाना तो होगा। और शेर मुकम्मल है दोस्त की, कुछ बातों के मतलब हैं और कुछ मतलब की बातें, कुछ बातों के मतलब हैं और कुछ मतलब की बातें, जो ये फर्क समझ लेगा वो दीवाना तो होगा। ये जो आखिरी शेर है ना, मेरा बड़ा पसंदीदा है, और इस भाग दौड़ भरी दुनिया में इसका सच बहुत ज्यादा साफ हो जाता है। फिलहाल सुनते रहे मिर्ची महफिल, आपके ताशी है आपके साथ इट्स हॉट।
3: होय गवा सारा चौपट मोरा रोजगार।

0: on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
4: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं। और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
0: मिर्ची इट्स हॉट।
5: खट खट
6: अगर कर
5: हूँ। अगर करना है तो कर वरना छोड़ दे।
6: खट खट हू दैट।
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप और आपका ताशी है आपके साथ। और परसों की बात है, मैं अपनी थेरेपिस्ट के यहाँ बैठा था, उनसे बात चल रही थी, तो वो कहती हैं, ताशी तुम्हें अपनी खुशियों के रास्ते से हटना पड़ेगा, तुम खुद को खुश नहीं रहने देते हो, किसी ना किसी बात को याद करके कभी किसी और को कोसते हो, कभी खुद को कोसते हो। मैं हंसने लगा तो पूछती हैं क्या हुआ। मैंने कहा आपकी बातें सुनकर इफ्तिखार आरिफ साहब का एक शेर याद आ गया, अब उनको सुना दिया तो आप भी गौर फरमाए। इफ्तिखार साहब लिखते हैं, जमाना हो गया खुद से मुझे लड़ते झगड़ते, जमाना हो गया खुद से मुझे लड़ते झगड़ते, मैं अपने आप से अब सुलह करना चाहता हूं। अब इफ्तिखार साहब की खुद से सुलह हुई कि नहीं ये तो नहीं पता, मगर मेरी जरूर हो जानी चाहिए। अजी थेरेपिस्ट को इतना पैसा किस लिए दे रहा हूं मैं। सुनते रहे मिर्ची महफिल, यू नो व्हाट आई से, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: करण जोहर, ऑनेस्टली बताइए, व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट द मॉनसून?
3: बारिश का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ मैं, हमेशा कहता हूँ कि आसमान के आंसू अभी गिरने लगे हैं। ऑलवेज लुक एट मॉनसून के ये बस उनके आंसू हैं, तो वी हैव टू पहुंच जाए जल्दी तो हो गया। बट आई नो के रेन और बारिश बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो तीन महीने में हमेशा ये मेरे फेवरेट महीने नहीं है साल के।
2: ये थे करण जोहर, हु स्पोक लाइक अ ट्रू ब्लू मुंबईकर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
5: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
6: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: और वक्त हो चला है मिर्ची महफिल से विदा लेने का, लेकिन उससे पहले
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड।
1: हाँ जी, और आज के ताशी अनप्लग्ड में आपको सुनाएं बुल्ले शाह साहब का लिखा हुआ, जो कि एक बड़े ही रेवर्ड हमारे सूफी पोएट हुए पंजाब से 17 सेंचुरी में, उनका लिखा हुआ एक ऐसा गाना जो कि सदियों दर सदियों रिक्रिएट होता आया है और आज भी हम सब की जबान पे है। दिस इज तेरे जया होर दिसदा।

देखिए आफरीन अगर अभी आई है तो जरूर कुछ काम की बात लेकर आई होगी। एंड बिकॉज इट इज वीकेंड माई फ्रेंड्स, तो ये बात जानना तो जरूरी है क्योंकि थोड़ा सा वक्त होता है ना आपके पास वीकेंड में। वेल क्या बात कर रही है आफरीन, आई एम टॉकिंग अबाउट दी आई पे एक्सचेंज रेट्स। That's right, IPEC exchange rate ये कहते हैं, तारी कतरियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीज 26.23। वही जनाब अगर पाकिस्तानी रुपीज की बात करें तो एक कतरियाल के बदले आपको मिल रहे हैं 76.11, वेयर एज बांग्लादेशी टाका आपको मिल रहे हैं 33.78। एक कतरियाल के बदले अगर श्रीलंकन रुपीज देखा जाए तो आपको मिल रहे हैं एग्जैक्टली 90.38। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, एक कतरियाल के बदले नेपाली रुपीज मिल रहे हैं 41.88। ये थे आज के एक्सचेंज रेट, घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां। हैप्पी वीकेंड दोस्तों।

0: Well, my friends, after this beautiful track, here we are back again. बैक अगेन विद बातें जो आपके काम की हो. वेल चलिए देखते हैं गोल्ड अपडेट्स क्या कहती हैं आज की.
1: गोल्ड अपडेट.
0: वेल देखिए गोल्ड आज कहता है दैट पैम्प 1 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 576 का थ्री रियल. आई थिंक सो इट्स गॉन डाउन. 5 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 2699. 10 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 5329 का थ्री रियल. वेर एज 1 ounce गोल्ड बार इज फॉर 16470 का थ्री रियल. एंड 10 तोला गोल्ड बार इज फॉर 61151 का थ्री रियल. ये थे आज के गोल्ड रेट. सोना लेना हो या ना, लेकिन भाव पे नजर ना हमेशा रहनी चाहिए. और देखिए ये जो कंसिस्टेंसी देख रहे हो आप, कंसिस्टेंटली ये गिरते जा रहा है, शायद आपके काम का हो. व्हाई नॉट. माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
2: Stay ahead of today's gold rates with Alpardhan Exchange, PAM's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAM gold bars
3: and earn Qatar Airways Avios today.
2: Visit our branches or download the app now.
4: Hello, Mirchi Helpline.
5: बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है.
4: मैं रात को लेट हो जाता हूँ, सोसाइटी के कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाते हैं. फिर सब जाग जाते हैं और मुझे लुक्स देते रहते हैं. बहुत ऑकवर्ड हो जाता है सर, क्या करूँ?
5: अरे तो एक काम कर, चोरी करने दूसरी सोसाइटी में जा, जा कुत्ते ना हो.
6: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

इंट्रोवर्ट हूँ दोस्त, ज्यादा लोगों से बात करना, ज्यादा बाहर जाकर घूमना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये अलग अलग जगह जाकर सोशल मीडिया से पोस्ट करके बता रहे हैं लोग। तो ये जरा समझ सी नहीं आई बात, आपको आई तो बताओ यार। मिर्ची सुन रहे हो आप, मेरा नाम क्रिश है और मैं यही सोच रहा था कि लोग ना इंट्रोवर्ट को एज अ कूल वर्ड मानने लग गए हैं। मतलब एक्सट्रोवर्ट से आपको सीखें, जो दिल से एक्सट्रोवर्ट हैं वो भीड़ में खो जाएंगे लेकिन हमेशा ये बोलेंगे कि मैं हूं एक्सट्रोवर्ट, मुझे पसंद है लोगों से बात करना घूमना। लेकिन इंट्रोवर्ट्स में ना कुछ फेक इंट्रोवर्ट्स भी होते हैं जो सिर्फ दिखाते हैं लेकिन अंदर से उनके भी बहुत सारे दोस्त हैं, वो भी टाइम टू टाइम घूमने जाते हैं। बट समझ तब नहीं आता जब मैक्सिमम बार वो खुद को इंट्रोवर्ट सोशल मीडिया पे बोलते हैं इतने सारे लोगों के आसपास खड़े होकर। एंड दिस आई हैव ऑब्जर्व्ड इन सो मेनी स्टोरीज, हैव यू ऑब्जर्व्ड इट? क्या मेरा ये थॉट सही है या इसमें कुछ ऑल्टरेशन करना है? तो आओ बात करते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर मिर्ची क्रिश के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूँ, KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माई नेम। फिलहाल कुछ बढ़िया गानों के साथ शुरुआत करते हैं। दिस इज मिर्ची, इट्स ऑल।

0: Mirchi. Buscaba la, buscaba la, sacaba la. ¡Grábala! ¡Murga, murga! ¡La vieja la murga! ¡Mirchi, murga!
1: Day. The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hall.
2: Hello,
3: ये हंसा से मेरी बात कराओ भाई.
2: Hello, क्या बोल रही हूँ मैं?
3: श्रीनिवासपुरी से हेड कांस्टेबल दरबीर सिंह बोल रहा हूँ.
2: हाँ जी.
3: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी.
2: आई तो थी, किसी की पता नहीं किसकी थी.
3: ना आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी. आपको मालूम है आपने क्या किया है? आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे जे जे, तीन लोगों ने आपको कॉल किया है डायलर टोन सुन के. एक आदमी सीरियस है, एम्स में भर्ती है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको यही डायलर टोन मिली थी, जे जे जे जे जे. ये दिल के मरीज के लिए कितनी खतरनाक है आपको ये पता है? तीन दिल के पेशेंट ने आपको फोन किया है और उनकी हालत खराब है. बेवकूफी की बात कर रही है.
2: मैंने अगर लगा रखा है, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी अगर कॉलर ट्यून उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करे.
3: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है? नहीं है, मैं, मेरे को पता था, मैंने आपको कॉल किया, मेरा दिल हिल गया यार.
2: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं?
3: कितनी डायलर टोन है? तुम आए तो गली में आज चांद निकलता, या फिर ये लगा लीजिए, तुझे देखा तो ये जाना सनम. आपका
2: पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई.
3: दफा 300 ट्रिंग ट्रिंग के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह है, मैं आपको ये बता रहा हूँ. दिल्ली में इस तरह की कॉलर ट्यून नहीं लगाएंगी आप, समझिए आप.
2: बताइए ना,
3: आप क्या कर सकते हैं? आप मुझसे बहस करने जा रही हैं.
2: और अगर कोई बीमार है मेरे कारण से, थोड़ा ना बीमार होगा
3: आपके कारण से. हंसा, मैं आपसे आखिरी बार तमीज से बात कर रहा हूँ. एक लेडी कांस्टेबल आएगी और आपको खींचते हुए लेके आएगी यहाँ श्रीनिवासपुरी थाने में, फिर आपको बताएंगे कि कैसे कॉलर ट्यून लगती है. आप बहस करने जा रही है मेरे से?
2: अच्छा ठीक है सर, आप जो बोलेंगे.
3: आपको कॉलर ट्यून लगानी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी कॉलर ट्यून लगाएंगी.
2: हाँ बताइए
3: आप कॉलर ट्यून लगाइए कुकड़ू को.
2: ठीक है सर, उसका मेरे को आप दे दीजिएगा, मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो.
3: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हमसा, और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुम्हारा मुर्गा बनाया है, मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था, और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है. जे जे जे.
2: यार आप लोग किसी दिन ना, मतलब
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: खट खट.
5: Who that?
4: जाहिर.
5: जाहिर, जाहिर हूँ.
4: जाहिर सी बात है, मैं ही हूँ और कोई नहीं.
5: खट खट. Who that?
0: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1. इट्स हॉट.

फाइनली इनको इनका पहला नेशनल अवार्ड मिला एंड आई जस्ट थिंक कि लेट कर दिया। सबका ही कहना था कि इनको ना पहले मिल जाना चाहिए था अवार्ड। एवरीवन वाज सो हैप्पी अबाउट हर। मिर्ची सुन रहे हो आप, मेरा नाम क्रिश है एंड आई एम टॉकिंग अबाउट यामी गौतम को मिला ये नेशनल अवार्ड। So she got the national award for the first time ever for the movie Article 370. In fact, best feature film का award भी Article 370 को ही मिला and audience में बैठे थे आदित्य धर जो कि आंखों में आंसू लिए बैठे थे। ये video viral हुई and in fact seriously I do believe कि यामी गौतम ने past में इतना अच्छा काम किया उनको काफी पहले मिल जाना चाहिए था but देर आए दुरुस्त आए तो सही। ये video जो viral हुई ना जो आदित्य धर को रोते हुए दिखा रही है वो ये कह रहे हैं लोग कि कुछ लोग तो बड़ा अच्छे से कमेंट कर रहे हैं ओ सच अ क्यूट मोमेंट फॉर द कपल, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं ये इसलिए नहीं है, ये अंदर ही अंदर दुखी हैं कि धुरंधर को ऑस्कर के लिए नहीं भेजा गया। पता नहीं जो भी है लेकिन आंसू जेन्युइन है, चाहे वो मूवी ना जाने के हो या फिर यहां बैक टू बैक दो नेशनल अवार्ड्स के हो। बाकी आप बताना आपको क्या लगता है। मिर्ची क्रिश के नाम से इंस्टाग्राम पर हूं, KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माय नेम। दिस इज मिर्ची, इट्स ऑल।

इट्स अ न्यू डे एंड अ न्यू ट्रेलर ड्रॉप्ड यस्टरडे. मूवी का नाम है प्रेम कीटाणु. मिर्ची सुन रहे हो आप, मेरा नाम क्रिश है एंड ये मूवी एक एवरेज रोम कॉम की तरह ही लग रही है. ट्रेलर देख के तो ऐसा ही लग रहा है. स्टारिंग अपार शक्ति खुराना, वीर पहाड़िया, आफिसा सईद एंड राकेश बेदी साहब. ट्रेलर जैसा कि मैंने कहा एवरेज रोम कॉम इसीलिए लग रहा है बिकॉज लड़के और लड़की की प्रेम कहानी है. सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है अंटिल लड़की का दोस्त एंट्री लेता है एंड देन इट्स अ गेम ऑफ जेलेसी, कॉम्पिटिशन एंड सो ऑन. सो स्टोरी में ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं जो अलग लगे. इनफैक्ट वीर पहाड़िया के एक्सप्रेशन में इतना वेरिएशन नहीं है तो आप स्टोरी में तो ना ही एक्सपेक्ट करके चलना. लेकिन मोस्ट प्रॉब्लमैटिक थिंग ये नहीं है. मोस्ट प्रॉब्लमैटिक थिंग ये है कि ये मूवी 2 अक्टूबर को रिलीज हो रही है, यानी इट विल बी क्लैशिंग विद दृश्यम 3 विच इज वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवीज ऑफ दिस ईयर. भाई तो सब तो सत्संग सुनने और पाव भाजी खाने जाएंगे तो प्रेम के कीटाणु देखने कौन जाएगा? वेल विल सी दैट. फिलहाल गानों का क्या सिस्टम है ये देखते हैं. ओनली ऑन मिर्ची, इट्स ऑन.

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
3: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं, और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: खटखट।
6: कौन है?
5: स्टेन।
6: स्टेन कौन?
5: स्टेन कर दिया मेरे पैंट को, मैं नहीं देता पैसे, जाओ।
7: खटखट, who that?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

जहां बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड यामी गौतम को मिला, वहीं बेस्ट एक्टर का अवार्ड शेयर हुआ। हम बात कर रहे हैं नेशनल अवार्ड्स की। कुछ देर पहले आई वाज टेलिंग यू अबाउट यामी गौतम को मिला पहला नेशनल अवार्ड फॉर द मूवी आर्टिकल 370। यहीं बेस्ट एक्टर का अवार्ड एक्चुअली दो एक्टर्स ने शेयर करा। इट वाज शेयर्ड बाय कार्तिक आर्यन फॉर चंदू चैंपियन एंड ममूती जी फॉर ब्रह्मयुगम। वहीं बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जो मैंने आपको बताया आर्टिकल 370 को मिला था, वहीं बेस्ट फीचर फिल्म फॉर प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट अवार्ड, ये अलग कैटेगरी है, ये मिला कल्कि 2898 AD को। Now, प्रॉब्लम ये है कि ये एंटरटेनमेंट इतना ज्यादा होलसम दे चुकी है कि इसका अगला पार्ट कंप्लीट तो छोड़ो आधा भी शूट नहीं हुआ है। इस कुछ टाइम पहले इनके डायरेक्टर ने बताया था कि प्रभास आए थे, उन्होंने कुछ दिन का शूट किया, ऑलमोस्ट 10 दिन के आसपास का ही शूट किया, उसके बाद वो दूसरी मूवी में बिजी हो गए हैं, तो जब वो फ्री होंगे तब शूट दोबारा से कंटिन्यू होगा, तब पूरा होगा पोस्ट प्रोडक्शन फिर। मतलब अगर यू आर वेटिंग फॉर द होलसम एंटरटेनमेंट का पार्ट टू, देन यू हैव टू वेट अ लिटिल लॉन्गर। मुझे लग रहा है ना मूवी को कुछ तो कर्स वगैरह लग गया है, एक छोटा सा हवन करा लो। पहले दीपिका जी छोड़ गई मूवी, अब प्रभास के पास टाइम नहीं है, करा लो एक हवन, बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आपको ठीक लगे। हमें तो देखना था इसका सेकंड पार्ट, हम इसीलिए बोल रहे हैं। फिलहाल कुछ गाने सुनते हैं ओनली ऑन मिर्ची। इट्स ऑल

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: शिल्पा राव, आपका तो हर गाना हमारा फेवरेट है, लेकिन इस बारिश में आपका फेवरेट गाना कौन सा है?
3: आई लाइक दैट सॉन्ग।

0: फॉरगॉट द फिल्म्स नेम.
1: फिल्म का नाम था थक्षक और इस गायक का नाम शिल्पा राव. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी बिल्कुल बताइए सवाल क्या है
0: सर वो मुझे हेल्दी डाइट शुरू करना है कैसे करूं
1: अरे तो सिंपल है ना ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कर मैं भी सबसे पहले ब्रेकफास्ट ही करता हूँ

0: आई थिंक बॉलीवुड के लिए ना माइथोलॉजी रिलेटेड मूवीज का टाइम चल रहा है। मिर्ची सुन रहे हो आप, मेरा नाम क्रिश है। विद हनुमान अंश क्रॉसिंग 350 करोड़ नाउ एंड रामायण पार्ट 1 रिलीजिंग ऑन दिवाली, बॉलीवुड मूवीज ने माइथोलॉजी को या तो बहुत ही ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया है या फिर आज के टाइम के साथ अच्छे से ब्लेंड किया है। सो आज के पांच का पंच में मैं ऐसी ही पांच मूवीज आपके लिए लेकर आया हूँ। दिस इज माई लिस्ट, स्टार्टिंग ऑफ विद नंबर 5, OMG यानी ओ माई गॉड। 2012 में आई ये मूवी स्टारिंग परेश रावल एंड अक्षय कुमार, डायरेक्टेड बाय उमेश शुक्ला। एक भूकंप से एक नास्तिक की एंटीक शॉप पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई, उसको एक्ट ऑफ गॉड बोल दिया गया और इंश्योरेंस क्लेम देने से मना कर दिया गया। नाउ ही डिसाइडेड टू स्यू गॉड। और फिर इस केस में हमें एंटरटेनिंग वे में क्या क्या सिखाया जाता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर आती है नंबर 4 पे वो मूवी जिसके बाद आप मुझे जितना चाहे जज कर सकते हैं, पर मेरी बात सुन लेना पहले। दिस इज ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा। 2022 में आई ये मूवी स्टारिंग रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन इन द लीड रोल्स, डायरेक्टेड बाय आयान मुखर्जी। इस मूवी ट्रिलोजी के इस फर्स्ट पार्ट में यूनिवर्स की कुछ नेगेटिव पावर्स डिस्ट्रॉय करने को तुली हुई हैं और उन्हें रोकने के लिए चाहिए कुछ अस्त्र, स्पेशली ब्रह्मास्त्र। ये मूवी अपना खुद का एक अस्त्रवर्स बनाने वाली है एंड जस्ट रिसेंटली अनाउंस्ड कि इसके सेकंड पार्ट पे ऑलरेडी काम शुरू भी हो चुका है। नाउ ऑनेस्टली अगर आप इस मूवी के डायलॉग्स को पूरे तरीके से चेंज कर दो ना, तो ये मूवी एक्चुअली काफी अच्छी विजुअल ट्रीट हो सकती है। बाकी अब आप मेरे को जितना चाहे जज कर लो। आगे की लिस्ट अगर गेस कर सकते हो या एड ऑन करना चाहते हो, देन इंस्टाग्राम पर आओ, मिर्ची क्रिश के नाम से आपको मिलूंगा, KRISH। फिलहाल मिलते हैं गानों के उस पार, ओनली ऑन मिर्ची। ऐसा
1: कैसे भूलेगी मेरा नाम, कैसे भूलेगी मेरा नाम।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La fiertă la burga. Milci, burga.
2: हेलो विनीत जी।
3: हाँ जी
2: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर। क्या हाल चाल है, शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
3: सही हाँ, मैं तो चल रही है।
2: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
3: 7:30 बजे तक।
2: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई हमारे, जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं।
3: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना, बचा जाएगा?
2: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
3: पागल हो गए हो क्या, क्या बजाएगा अकेला वो?
2: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये नहीं, ये अच्छा अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए हैं सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
3: मैं क्या बात करूं यार, अकेला क्या बजाएगा?
2: नहीं वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चलेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए।
3: हेलो
2: हाँ विनीत जी, मजा आया? ये मिस्टर थॉमस ये
3: क्या बजा रहा है, ये सुना आपने?
2: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर। मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चल रहे हैं सर?
3: मैं घोड़ी तो चढ़ी जाऊंगा यार।
2: अच्छा सर मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चलेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चलने वाले चलाएंगे?
3: हेलो हेलो,
2: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
3: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये? है
2: विनीत जी मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे इनका काम। मेरी बात सुनिए, अभी पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर? हाँ
3: अरे कॉफिन ऑफिन कर, यहाँ क्यों लेके आए तुम?
4: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा। और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मन मानिए।
3: अच्छा भैया
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: खट खट,
7: हु दैट?
6: जस्सी।
7: जस्सी कौन सी वाली जस्सी?
6: जस्सी हु हैज कम आंटी जी।
7: खट खट, हु दैट?
5: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। मिर्ची, इट्स हॉट।

तो लिस्ट को आगे बढ़ाया जाए। आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे मूवीज के बारे में जिन्होंने बॉलीवुड में या तो माइथोलॉजी को बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया या फिर आज के मॉडर्न टाइम्स में ब्लेंड करके दिखाया। पांच का पंच में इस लिस्ट में हमने फिफ्थ नंबर पर बात करी OMG मूवी के बारे में, फोर्थ पर बात करी ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के बारे में। अब थर्ड नंबर पर आती है कल्कि 2898 AD। 2024 में आई ये मूवी स्टारिंग प्रभास, अमिताभ बच्चन, कमल हसन, दीपिका पादुकोण, डायरेक्टेड बाय नाग अश्विन, पोस्ट एपोकलिप्टिक या कलयुग के टाइम को दिखाती है जहां विष्णु जी के 10th और फाइनल अवतार कल्कि को अभी प्रोटेक्ट करना है बिकॉज ही इज अबाउट टू बी बॉर्न। अमिताभ बच्चन प्लेज द रोल ऑफ लेजेंडरी अश्वत्थामा और स्टोरी महाभारत के भी कुछ ग्लिम्सेस को दिखाती है। विद सेकेंड पार्ट इन शूटिंग ये एक 2-part कंप्लीट स्टोरी होने वाली है एंड देखने में मजा भी आएगा। फिर आती है सेकेंड नंबर पर वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स रिसेंटली रिलीज हुई महाअवतार नरसिम्हा। 2025 में आई ये एनिमेटेड मूवी वॉज डायरेक्टेड बाय अश्विन कुमार जो कि विष्णु जी के सभी अवतार पर एक एक करके मूवी बनाने वाले हैं। दिस मूवी वॉज ऑब्वियसली ऑन द नरसिम्हा अवतार एंड अनएक्सपेक्टेडली इट ब्लू लाइक एनीथिंग ऑन रिलीज। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये 15-40 crore में बनी मूवी 300-325 crore तक का प्रॉफिट लाने वाली है। एंड दिस इज अ सिंपल येट मैजिकल मूवी जो आपको पूरी स्टोरी बहुत ही सरल तरीके से बताती है। आगे की लिस्ट यानी कि नंबर 1 का स्पॉट अगर आप बताना चाहते हो या गेस करना चाहते हो देन मेरे इंस्टाग्राम पर आ जाओ। मिर्ची क्रिश के नाम से अवेलेबल हूं। KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माई नेम। दिस इज मिर्ची। इट्स हॉट।

हाँ जी, गेस करिएगा नंबर वन मूवी। मिर्ची सुन रहा, मेरा नाम क्रिश है। टुडे 5 का पंच में हम बात कर रहे हैं टॉप 5 माइथोलॉजी रिलेटेड बॉलीवुड मूवीज के बारे में, जिनमें हमने नंबर 5 पर बात करी ओएमजी यानी ओ माय गॉड के बारे में। 4th पर आई ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा। 3rd पर आई कल्कि 2898 AD एंड 2nd पर आई महाअवतार नरसिम्हा। नाउ नंबर 1 का स्पॉट बताने से पहले एक स्पेशल मेंशन तो बनता है। वैसे तो हम बॉलीवुड मूवीज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन माइथोलॉजी में इंडिया की ये मूवी कहीं से कहीं तक पीछे नहीं रहनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ कांतारा की। 2022 में आई ये मूवी, स्टारिंग सप्तमी गोस्वामी, ऋषभ शेट्टी, रुक्मणी वसंत, डायरेक्टेड बाय ऋषभ शेट्टी। ये मूवी एक फिक्शनल स्टोरी है, लेकिन कर्नाटका के डीप कल्चरल ट्रेडिशन, फोकलोर और वर्शिप के बारे में बताती है, विच स्टिल एग्जिस्ट इन द मॉडर्न टाइम। सो ऑब्वियसली दिस इज अ मस्ट वॉच। अब आते हैं नंबर 1 स्पॉट पे, रामायणा द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम। 1993 में आई थी ये मूवी, डायरेक्टेड बाय जापानीज डायरेक्टर प्रोड्यूसर यूगो साको एंड कोइची सासाकी अलोंग विद राम मोहन। रामायणा एक्चुअली इसके जितने भी अडेप्टेशन बने हैं ना, उनमें से ये मूवी एक कल्ट क्लासिक है बिकॉज ऑफ द वे इट हैज बीन मेड। ऑफकोर्स ये एक इंडो जापानीज स्टाइल से बनी हुई मूवी है, लेकिन दिस इज टिल डेट माई पर्सनल पोर्ट्रियल ऑफ द एपिक सागा, जो हम बचपन से ऑलरेडी सुनते आ रहे हैं। दैट टू इन जस्ट 2 hours and 15 minutes। ये एनिमेटेड मूवी इसीलिए डिजर्व करती है स्पॉट पे आना। अगर मैं अभी भी कोई मूवी भूल रहा हूं जो कि माइथोलॉजी में बनी है एंड बॉलीवुड की बहुत अच्छी मूवी है, देन प्लीज आ जाओ मेरे इंस्टाग्राम पे और बताओ मुझे। आई वुड लाइक टू करेक्ट माई सेल्फ यार। इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हूं मिर्ची क्रिश के नाम से। KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माई नेम। दिस इज मिर्ची। It's all.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
3: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं। और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
4: मिर्ची इट्स हॉट।

0: ओ भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
1: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM।

देखो धुरंधर को इतना सक्सेसफुल बनाया उसके अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स ने। आई थिंक आदित्य धर ये इसीलिए कर पाए बिकॉज वो शायद रियल लाइफ में भी यही करते हैं। आई हैव रीजन टू बिलीव दिस।

पूछा गया कि आपको क्या लगा, कैसा लगा, क्या बोलना चाहते हो, ऑल ही सेड वाज कि आई होप टू रिटर्न नेक्स्ट ईयर फॉर धुरंधर. एंड मुझे ऑनेस्टली ये स्टेटमेंट धुरंधर के फर्स्ट पार्ट के क्लिफहैंगर की तरह लगी, जहां पे हमें अगले पार्ट का बेसब्री से इंतजार है कि अब क्या होगा. तो आई थिंक ये जो अगले साल अगला पार्ट आने वाला है ना आदित्य धर की रियल लाइफ का, तो इसमें भी कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है. क्या पता अगले साल जा रही हो ऑस्कर्स में, कैसे क्यों ये कुछ नहीं पता, बट आई थिंक ये इंसान रियल लाइफ में भी यही करता है. भाई जिसने अच्छी मूवी बनाई है ना, दैट पर्सन डिजर्व्स अवार्ड्स. तो ये मूवी फुल ऑन एंटरटेनिंग मूवी थी. आई थिंक इसको बहुत बढ़िया से बढ़िया अवार्ड मिलने भी चाहिए. लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. आपको क्या लगता है? इंस्टाग्राम पे हूँ मिर्ची क्रिश के नाम से, KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माई नेम. बताना अपना ओपिनियन. दिस इज मिर्ची, इट्स हॉट.

देखो बचपन में काफी बार ऐसा होता था कि सामने वाले के पास कोई चीज है ना, खिलौना है या कुछ है जो कि हमको चाहिए और हमें नहीं मिल सकता, तो हम चुपके से उसको तोड़ देते थे। कोई कन्फेस नहीं करेगा लेकिन काफी लोगों ने किया होगा। छोटे थे यार, अब वो टिफिन हो, वाटर बॉटल हो, पेंसिल बॉक्स हो या कोई टॉय हो, कहाँ समझ थी। मिर्ची सुन रहे हो आप, मेरा नाम क्रिश है। लेकिन कुछ लोग बचपन से अभी तक इस आदत को कैरी कर रहे हैं और अपने करियर में भी इसको अप्लाई कर रहे हैं। कैसे? देखो सूरत का एग्जांपल देता हूँ। एक अकाउंटेंट ने अपने एक्स बॉस के 14 शॉप्स को जला दिया बिकॉज उन्होंने इस आदमी की 10,000 की सैलरी रोक दी थी। ये आग पेट्रोल से लगाई गई, सीसीटीवी पे सब कुछ शो हो रहा था। नुकसान जो टोटल हुआ वो हुआ 24 करोड़ के गुड्स का। सो बाद में उसने कन्फेस भी कर लिया, इनफैक्ट ये भी बोला कि मुझे उसको सबक सिखाना था। अब देखो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि इट्स नॉट अबाउट 10,000 वर्सेस 24 करोड़ के गुड्स, इट्स अबाउट ह्यूमन इमोशन। क्योंकि एक बार आता माजी सटकली हो जाता है ना, तो कोई किसी की नहीं सुनता भाई। तो ये बात सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि एक तो एज अ पर्सन ये आदत छोड़ दो, और दूसरा अगर आप भी किसी के एक्स बॉस हो तो सैलरी ना रोकना किसी की। नहीं बट जस्ट सेइंग, मैं नहीं चाहता किसी के साथ हो, बाद में ना बोलना कृष्ण ने नहीं बताया। फिलहाल कुछ बढ़िया से गाने सुनते हैं ओनली ऑन मिर्ची एट साथ।

0: Milci.
1: Iscabana, Buscabana, Sacabana, Burga, Burga. La Virva, la Burga. Milci, Burga.
2: Hello?
3: Hi, you... से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
2: हेलो।
3: हाय, ये फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4,19,83,983।
4: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार? अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं, आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका
2: वही मैं सुधर रहा था, मतलब लगा।
3: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
2: हाँ जी।
3: कुकड़ों को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
7: अरे, पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
8: कैसे रुक सकता है?
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
5: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

कभी कभी तो लगता है दवाइयाँ हैं या फिर रेडी टू ईट स्नैक्स हैं। हम खाते ही ऐसे हैं ना, समझ नहीं आता। मिर्ची सुन रहे हो आप, मेरा नाम क्रिश है और इसीलिए शायद एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने एक एडवाइजरी जारी करी जिसमें ये बोला कि पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स पे थोड़ा कंट्रोल रखो। ये चीजें सिर्फ तब लो जब डॉक्टर ने खुद प्रिस्क्राइब की हो। वी ऑल नो हमारे घर में कोई भी लोग हैं उनमें से एक या दो ऐसे होंगे जो कि खुद का मेडिकल बॉक्स खोल के बैठते होंगे जब भी घर में कोई बीमार पड़ता होगा, उसमें से दवाइयां निकालते हैं और आपको दे देते हैं कि ये खा लो। मेरा खुद का दोस्त है, वो दो मेडिसिन्स का नाम उसने रटा हुआ है कि कुछ भी किसी को भी हो उनको बोलता है कि यार दो दिन के लिए दवाई खा ले ठीक हो जाएगा। मतलब बेसिकली सारे खुद के डॉक्टर्स ही हैं। एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन डूइंग दिस फ्रॉम सो मेनी इयर्स। और ये कितना डेंजरस हो सकता है हमें आइडिया भी नहीं है, इसीलिए शायद CDSCO ने खुद एक एडवाइजरी जारी करी। सो आई थिंक इट्स जस्ट बेटर टू बी केयरफुल देन टू रिग्रेट लेटर, राइट? उसको स्नैक्स की तरह मत खाते रहो। हमारे पास डिग्री नहीं है डॉक्टर, हम नहीं है डॉक्टर, गो टू अ प्रोफेशनल, बाकी मर्जी तो अपनी है। दिस इज मिर्ची, सोचना इस बारे में। इट्स ऑल

भाई ये कैसा कैजुअल तरीका है बताने का कि फोन मत यूज करो। वहाँ बच्चों के चीख चीख के गले दर्द हो गए, आप क्या कर रहे हो? ये एक्चुअली हुआ उत्तराखंड के एक स्कूल में। मिर्ची सुन रहे हो आप, मेरा नाम क्रिश है। उत्तराखंड में एक स्कूल एक कैंपेन चला रहा है जिसका नाम है एंटी मोबाइल कैंपेन, जिसमें वो बच्चों को सिखा रहे हैं कि क्या क्या नुकसान होता है अगर आप ज्यादा स्क्रीन टाइम देते हो, तो ज्यादा फोन यूज करते हो। तो उसने क्या किया, एक लड़की को एक रेड कलर के रंग में भीगी हुई पट्टी बांधी आंखों में, और वो लड़की ने बोला कि मैं मोबाइल ज्यादा यूज करती थी तो मेरा ना सर्जरी हुई है, मेरी आंखें निकालनी पड़ी डॉक्टर को। बच्चे चीख रहे रो रहे हैं। मतलब आप इमेजिन करो, स्कूल में बच्चे जाते पढ़ने के लिए, आप उन्हें आराम से पढ़ाओ आराम से सिखाओ, या तो बच्चों को चिखवा दिया भाई, खौफ में बच्चे घर आए होंगे। इसके बाद लिटरली एक्शन लिया जाएगा स्कूल के अगेंस्ट, बिकॉज दिस इज नॉट द वे टू टीच समथिंग। ये तो आप बच्चों को बेसिकली बुरा जो होता है उनकी लाइफ में उससे बचने के लिए चीजें सिखा रहे हो, लेकिन उनके साथ बुरा करके। ये एजुकेशन थोड़ी उल्टी नहीं पड़ रही है? आप ढंग से भी सिखा सकते हो, मतलब मर्जी है आपकी। बाकी मुझे तो ये बहुत खतरनाक तरीका लगा, आई वुड नेवर गो टू अ स्कूल लाइक दैट। मिर्ची सुन रहे हो, थोड़ा दिमाग को रिलैक्स करते हैं अच्छे गाने सुन के। इट्स ऑल

0: में की स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
3: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं, और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष, महापुरुष।
4: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स,
6: जबरदस्त ट्रैक्स।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
7: 89.6
8: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: जब एक औरत के साथ इनजस्टिस हो तो उसको क्या करना चाहिए?
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: ऑफ कोर्स आप बोलेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना चाहिए, उसको एक प्रॉपर रूट लेना चाहिए टू गेट जस्टिस। बट अगर जस्टिस सिस्टम ही उसको फेल करती जाए तो फिर क्या? क्या वो चुप रहेगी, सिस्टम का वेट करेगी, या खुद अपनी जस्टिस की फाइट लड़ेगी? वेल, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने इस सवाल का जवाब हमें कई पावरफुल थ्रिलर्स के जरिए दिया है। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे ही फेमिनिस्ट फिल्मों की बात कर रही हूँ जहाँ द फीमेल प्रोटैगनिस्ट्स टुक द सेंटर स्टेज। लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट सिस्टम मिडनाइट, उसके बाद NH10, देन मॉम, और अब बारी है टू टॉक अबाउट द मूवी बुलबुल। साल 2020 में अन्विता द डायरेक्टोरियल ये गॉथिक पीरियड हॉरर फिल्म आई, स्टारिंग तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी एंड राहुल बोस एज लीड्स। सेट इन द 1880s बंगाल, बुलबुल नाम की एक चाइल्ड ब्राइड एक ओप्रेसिव वर्ल्ड में ग्रो करती है और इवेंचुअली अपनी एजेंसी और पावर रिक्लेम करती है। वैसे फिल्म की डायरेक्टर साहिबा ने इसको एक फेमिनिस्ट फेरी टेल भी कहा था, जहां सुपरनेचुरल एलिमेंट्स के थ्रू एक औरत के पेन और रेश को एक्सप्लोर किया गया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब नंबर 5 पे लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म नो वन किल्ड जेसिका, जो साल 2011 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय राजकुमार गुप्ता। इसमें विद्या बालन, रानी मुखर्जी और मायरा कर्ण लीड रोल्स में थे। सो एक मर्डर हुआ जिसके विटनेसेस थे, एविडेंस भी था, फिर भी जस्टिस इतना डिफिकल्ट क्यों था? वेल, नो वन किल्ड जेसिका जेसिका लाल मर्डर केस से इंस्पायर्ड क्राइम थ्रिलर है, जहां विद्या बालन प्लेज जेसिका सिस्टर सबरीना लाल, वहीं रानी मुखर्जी ने जर्नलिस्ट मीरा गेटी का रोल प्ले किया है। फिल्म में मीडिया पावर, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और जस्टिस सिस्टम के फेलियर्स को हाईलाइट किया गया है, एंड इट शोज हाउ अ वुमन्स फाइट कैन बिकम अ पब्लिक मूवमेंट। तो मेरे फेमिनिस्ट फिल्मों वाली पांच का पंच की लिस्ट में इतना ही। बाकी आप कोई ऐसी ही फिल्म इस लिस्ट में ऐड करना चाहें, देन फील फ्री टू डू दैट मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट करके। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट। में मीडिया पावर, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और जस्टिस सिस्टम के फेलियर्स को हाईलाइट किया गया है, एंड इट शोज हाउ अ वुमन्स फाइट कैन बिकम अ पब्लिक मूवमेंट। तो मेरे फेमिनिस्ट फिल्मों वाली पांच का पंच की लिस्ट में इतना ही। बाकी आप कोई ऐसी ही फिल्म इस लिस्ट में ऐड करना चाहें, देन फील फ्री टू डू दैट मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट करके। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: The late Irfan Khan से एक बार पूछा गया कि कहाँ की बारिश आपको सबसे ज्यादा पसंद है? Is it Delhi? Is it Mumbai?
3: उसका मजा सिर्फ राजस्थान में है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ बरसात जो है देर से होती है। वहाँ जो है सावन को सेलिब्रेट किया जाता है, सावन भादो जो कहते हैं, यू नो, फसल भी कटती है और झूले लगते हैं। राजस्थान में जो है बरसात में भीगने का और बरसात का जो मजा है वो बहुत अलग है।
2: ऐसा एक दिन नहीं जाता जब इरफान खान का ख्याल नहीं आता। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Dosti kai kusul hai madam. No sorry, no thank you.
3: Bhai saab, sorry and thank you. हमें दोस्ती नहीं, एंटरटेनमेंट चाहिए।
4: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
5: खूब मिलेगा। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
7: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची। बताओ सवाल क्या है?
1: सर, मैं जब भी घर आता हूँ ना, पापा जाग रहे होते हैं। वो सोते ही नहीं है, तो क्या करूँ?
0: अच्छा, पापा जाग रहे होते हैं, तो एक काम कर, चोरी करने दूसरों के घर जा बच्चू।

0: आवाज में हमारा फन टू का ये गाना सुनाया आपको किसने? एंड आ गया वो लेकर वीकेंड वाला शाम शानदार, जहां पर अब दो घंटे देश दुनिया की बातें आपके कानों तक पहुंचाएंगे। यार फिलहाल मिर्ची घड़ी का टाइम 4:04 होने को आए।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: देखिए मैं कहता हूँ, कतर में रूल के साथ चलोगे तो बल्ले बल्ले, वरना आपके फाइन तो होने ही पक्के। वेल MOL ने रिकॉर्ड किए 644 वायलेशंस और 388 नॉन कंप्लायंट वर्क साइट्स पे ताला लग गया, यानी कि अब यहां पर काम नहीं होगा। 2026 हीट स्ट्रेस प्रिवेंशन कैंपेन के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के सर्वे ने बता दिया कि हमारे मजदूर भाइयों को जब खुले में काम कराया गया या जब ढक के काम कराया गया तो वो सारी सुविधाएं नहीं थी जो मिनिस्ट्री की गाइडलाइन में थी, तो ऐसे में कार्रवाई हुई है, यानी कि कुछ लोगों पर वायलेशन चार्जेस लगे हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ने हमें बताया कि UDI ऐप यानी कि कतर डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड के इस ऐप को हम कैसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल स्पेस वीक 2026 कैसे कतारा में मनाया जाएगा, ये सब कुछ आपको पता लगेगा। मस्त फॉलो गौरव के साथ रहिए 89.6 मिर्ची वन पर। अगले दो घंटे में हम यही सब बातें बताएंगे। मिर्ची इट्स हॉट गाना सुनाते आप हमारे बंधु और हम आपके सखा दोस्त, तो गाना अगला हमारी दोस्ती पे, कविता एंड नीरज।

0: Energy. Escabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtual la burga.
1: हेलो, हाँ जी बोलिए।
2: क्या बोलूँ जी, आप बोलिए।
1: आप बोलिए ना।
2: कॉल आपने किया, आप बोलिए।
1: कॉल मैंने किया है। हेलो।
2: अरे बोलो भाई, कॉल तुमने किया, बोलो क्या हुआ।
1: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार? मैं यहाँ सो रहा हूँ, आपने मुझे कॉल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार। आपने नंबर मेरा डायल किया है, मेरे घर बेल बजी है यार।
2: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा। अरे फोन मैंने नहीं किया यार।
1: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार, मेरे यहाँ भी बेल बजी है।
2: नींद में है क्या?
1: मैं नींद में ही था, आपने डिस्टर्ब कर दिया। मैं देख रहा हूँ नंबर।
2: मैं क्या बेल मेरे यहाँ बजी है?
1: आ जाते हैं उठ के, मैं तो फोन काट रहा हूँ। फोन रखी तरह। हेलो। हाँ बताइए।
2: तेरी जेब में फोन रखा होगा, वो बटन दबा होगा बार बार।
1: बात करनी है तो बात कर लीजिए। आप दो बार फोन कर चुके हैं, आप कह नहीं रहे कि यार बात करनी है। आप बताइए मुझे प्लीज, क्या काम है?
2: हेलो।
1: फिर कोई यार, आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार? मैं आपसे प्यार से बात करे जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं।
2: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा, मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ। मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम, मैं फोन नहीं कर रहा।
1: तो आप गाड़ी चलाइए। नहीं, आप अपनी गाड़ी चलाइए, आप अपना काम करिए। फोन मत करिए मुझे कम से कम यार, फोन मत करिएगा बस यहाँ पे।
2: फोन नहीं कर रहा अभी।
1: आप देख, बदतमीजी से बात मत करिए। आप समझ गए? मैं यहाँ से लेफ्ट चाटा मार दूंगा, बता रहा हूँ मैं यहाँ से। है ना, मेरे चप्पल लेके आ, ये मेरे हाथ में चप्पल है, मैं बता रहा हूँ। मैं
2: चप्पल
1: पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहा है। मैं सो रहा हूँ यहाँ पे। फोन क्यों?
2: जीना आराम कर दिया तुम जैसे।
1: जीना बता रहा हूँ यहाँ से। भाग, इस बार अगर कर दिया ना बता रहा हूँ, दांत तोड़ दूंगा। चप्पल है मेरे हाथ में।
2: फोन आ रहा है, मेरी बात आएगा। फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले।
1: देखिए, जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ। मेरी बात सुनिए अभिषेक, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारी आवाज़ सारी बाहर आ रही है, तुम मुर्गा बन गए हो। ये सारी कॉल्स मैंने करी थी।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: तनिष्क लेकर आए हैं गार्डन ऑफ जेम्स, जहां कलर इज द स्टोरी बिहाइंड एवरी स्टोन, मेड टू बी वोन ऑफन। पहनिए चाहे क्लासिक डिनर ओकेजन के लिए, फैमिली फंक्शंस के लिए, या अ रेगुलर ऑफिस डे। अवेलेबल अक्रॉस तनिष्क स्टोर्स इन कतार और ऑनलाइन एट tanishq.ae। विजिट अ तनिष्क स्टोर नियर यू एंड सी द कलर्स इन पर्सन। TNC अप्लाई।
5: यार शॉपिंग का प्लान है पर बजट थोड़ा टाइट लग रहा है।
6: अरे रिलैक्स, लूलू का हाफ पे बैक ऑफर सुना है।
5: हाफ पे बैक मतलब?
6: बस QAR 200 की शॉपिंग करो और QAR 100 का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली।
5: वाओ, किस किस चीज पे?
6: रेडीमेड गारमेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग और बेबी एक्सेसरीज।
5: मतलब शॉपिंग भी सेविंग भी?
6: बिल्कुल, वाउचर भी इन्हीं कैटेगरीज में रिडीम कर सकते हो, तो देर किस बात की। हेड टू लूलू, हाफ पे बैक ऑफर के साथ डबल फायदा। लूलू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
7: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं,
8: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
7: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं,
9: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
7: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
10: भाई क्या कर रहा है तू? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
11: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।
12: गुड़ की ने

0: नवराज हंस हर्षदीप कौर की आवाज में गुड़ नालिशिक मिठास सुनाया किसने? पर इस गाने की एक लाइन झूठ नहीं बोलेंगे। पहले हम लोग बोलते थे गोरी नाल इश्क मीठा, गोरी नाल बोलते थे, फिर पता लगा रहे तो गुड़ नाल इश्क मीठा है। फिलहाल मैं कुछ ऐसा बताऊंगा जिसको सुनकर बच्चे खुश हो जाने वाले हैं। #974974 The कल्चरल विलेज फाउंडेशन कतारा ने अनाउंस किया है इंटरनेशनल स्पेस वीक सेलिब्रेशन 4th of October से शुरू होकर 7th of October के बीच होने जा रहा है। तो जो बच्चे स्पेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, यानी कि अंतरिक्ष को और समझना चाहते हैं, वंडर ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए मौका मिल गया आपको। यस, 4 दिनों तक इवेंट चलेगा, 4th, 5th, 6th and 7th। एंड इस 4 दिन के इवेंट की टाइमिंग है 4 PM to 7 PM एट द प्लानिटेरियम अल्थुरैया बिल्डिंग 41 इन कतारा कल्चरल विलेज। वेल, बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर आए हैं इसे सेलिब्रेट करने के लिए, जहां पर SLSAT, कतर सैटेलाइट कंपनी, वर्ल्ड स्पेस वीक कतर एंड सुफारा अहदफ जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एम्बेसडर है हमारे कतर में। एंड द प्रोग्राम एम्स टू प्रमोट अवेयरनेस ऑफ स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी एंड देयर रोल इन सपोर्टिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वेल, कह सकते हैं फ्यूचर को समझने का एक मौका, किस तरह से स्पेस में चीजें एक्सप्लोर की जा रही हैं, क्या क्या वहां खास हो रहा है, ये सब कुछ। इसके अलावा यहां पर फ्री वर्कशॉप भी होगी जो मेन प्रोग्राम है उसके साथ साथ। एंड आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं वाया QR कोड और ऑनलाइन लिंक ये ऑर्गेनाइजर्स प्रोवाइड करेंगे। तो आपको कतारा के सोशल मीडिया हैंडल पे लगातार बने रहना है ताकि आप इस इंटरनेशनल स्पेस वीक के सेलिब्रेशन का हिस्सा बन पाओ। जब भी बात स्पेस की आती है, अंतरिक्ष की आती है, मेरे मन में एक ही सवाल आता है यार कि जीरो फिल्म में जिस तरह से शाहरुख खान भी चले गए थे, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, कभी हमको मौका दे दो, हम ऊपर की दुनिया में जाएंगे, वहां भी दोस्त बना के लौटेंगे, फिर जादू पैंपू पैंपू हमारे लिए भी बजाएगा। 89.6 मिर्ची वाली थॉट।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस।

मटक मटक लौंडो के दिल पटक पटक सांसे जाए अटक अटक आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कम ऑन बेबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

वाला सा रंग तेरा, बावला सा ढंग तेरा, मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा। तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़। I am the baddest motherfucker. Yeah. Heartbeat.

0: हां जी, असि जिथे भी जाते हैं सिरा कराते हैं, ऐसा गाना हमारे गुरु भाई गा दे। एंड आ गया मसमोल गौरव अब उस इंपॉर्टेंट बात को लेकर जो हमारे और आपके लिए बहुत जरूरी है। हाँ जी, फेस्टिव सीजन आ रहा है, इन्वेस्टमेंट करना है, और अगर गोल्ड में इंटरेस्ट रखते हो तो हम रेट्स बताते हैं।
1: गोल्ड अपडेट।
0: वेल, अल फरदान एक्सचेंज के गोल्ड रेट्स इस वक्त आपको कुछ यूं मिलेंगे, जो कि हैं ऑफिशियल पैम्प के एजेंट हमारे कतार में। पैम्प एक तरह से स्विट्जरलैंड की सर्टिफाइड 24 कैरेट गोल्ड की एक गारंटी देते हैं। एंड पैम्प 1 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चनाबार एट 576 कतारी रियाल, पैम्प 5 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चनाबार 2699 कतारी रियाल, पैम्प 10 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चनाबार एट 5329 कतारी रियाल, पैम्प 1 औंस मिलेगा आपको फॉर्चनाबार 16470 कतारी रियाल में, एंड पैम्प 10 तोला गोल्ड बार एट 61151 कतारी रियाल। ये है राइट नाउ अल फरदान एक्सचेंज में मिलने वाले पैम्प के गोल्ड रेट्स, जो आपने सुने मिर्ची पर। एंड अगर पैसे आ रहे हैं या बचा रहे हैं तो सही जगह इन्वेस्ट कीजिए, दैट इज गोल्ड, क्योंकि रिटर्न जबरदस्त है। मिर्ची इट्स हॉट है जी।
1: Stay ahead of today's gold rates with Al Fardan Exchange, PAMP's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAMP gold bars
2: and earn Qatar Airways Avios today.
1: Visit our branches or download the app.

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: सूरज चाचू, इतना प्यार आप हम लोग से क्यों करते हो? मतलब यार सूरज चाचू, इतना प्यार कर लिए, जाने का नाम ही नहीं ले रहे, ना टेम्परेचर नीचे की तरफ जा रहा है, ना मौसम अच्छा हो रहा है, ना हमारे वीकेंड का अच्छा प्लान बन पा रहा है।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: लगता है कुछ बदलना पड़ेगा। तापमान सलमान के चलते सूरज चाचू अपना तापमान सलमान खान की तरह एकदम तपिश के साथ रख रहे हैं। 41 डिग्री सेल्सियस आज 24 सितंबर की तारीख में भी इतनी गर्मी बरस रही है, एंड मिनिमम अराउंड 30 है। बड़ी बात यह है कि ह्यूमिडिटी ने अलग अपना कहर मचा रखा है। हाँ जी, हवाओं की रफ्तार बिल्कुल गायब है, वहीं ह्यूमिडिटी 48% के साथ है, जो कि आने वाले टाइम यानी कि इस वीकेंड आपको बड़ा हेजी और फॉगी वेदर देने वाली है। तो तैयार रहिए दोस्तों थोड़ी और गर्मी झेलने के लिए। ये ना सही, अक्टूबर में तो बदलोगे हैं। 2 अक्टूबर को याद है ना क्या हुआ था? सत्संग हुआ था, विजय अपने परिवार को लेके गया था, उस टाइम हम लोग बोलेंगे विजय वीकेंड पे बीच पे गया था। काश ऐसा मौसम हो जाए। फिलहाल के लिए जब तक नहीं हो रहा, पानी पीते रहो, सूरज चाचू को कोसते रहो, और अगला गाना ग्रेटेस्ट सिंगर ऑफ ऑल टाइम मैं तो कहता हूँ जुबिन गर्ग की आवाज में ये गाना।

0: Bollywood, Bollywood, bold art. Only on Mirchi. It's hot.
1: करण जोहर, ऑनेस्टली बताइए, व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट द मॉनसून?
2: बारिश का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ मैं, हमेशा कहता हूँ कि आसमान के आंसू अभी गिरने लगे। आई ऑलवेज लुक एट मॉनसून के ये बस उनके आंसू हैं, तो वी हैव टू पहुंच जाए जल्दी तो क्या। बट आई नो के रेन और बारिश बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो तीन महीने में हमेशा ये मेरे फेवरेट महीने नहीं है साल के।
1: ये थे करण जोहर, हु स्पोक लाइक अ ट्रू ब्लू मुंबईकर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्ड आउट, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड आउट,
3: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
5: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
4: This initiative is driven by GWM.

0: hypermarkets. Don't miss out. Visit your nearest Lulu hypermarket and make your anniversary shopping extra special. Lulu hypermarkets, where the world comes to shop.
1: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
2: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
3: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के? कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: ये जब से मुझे चश्मा लगा है नंबर बढ़ता ही जा रहा है, इसे कैसे रोकूं?
1: अरे सिंपल है ना मामू, पहली फुर्सत में चश्मा निकाल के साइड में रख दो ना, प्रॉब्लम सॉल्व।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: वैसे तो ये गाना बैंगल्स का था, लेकिन हम ज्वेलरी एंड वॉचेस पर आएंगे। लेकिन उससे पहले टाइम बताएंगे, 5:04 होने को आए।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, खतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: हाँ तो जी, हम कह रहे थे कि बैंगल्स गाना खत्म हुआ संजू राठौड़ की आवाज में, लेकिन हम बात करेंगे उस वॉच और ज्वेलरी एग्जीबिशन की जो हमारे कतर की शान है, 22nd एडिशन ऑफ दोहा ज्वेलरी एंड वॉचेस एग्जीबिशन। इस बार इसमें कुछ नया हो रहा है। यस, हेल्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ हिज एक्सीलेंसी शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जैसिम अल थानी, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, कतर टूरिज्म एक साथ इस 22nd एडिशन में एक ऐसी चीज लेकर आया जो इससे पहले एडिशंस में नहीं थी। 28 सितंबर से 3 अक्टूबर डीसीसी में होने वाले DJWE बोले तो दोहा ज्वेलरी वॉच एग्जीबिशन में इस बार आपको अर्ली एक्सेस का एक्सक्लूसिव टिकट भी मिल रहा है। वेल, इस साल के एडिशन में यह सबसे खास बात है कि आप अर्ली एक्सेस टिकट ले सकते हैं एट $100 पर टिकट एंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर। पहले 500 लोग ठीक दोपहर 2 से 4 बजे के बीच ऑन द ओपनिंग सेरेमनी देख पाएंगे वो सारी चीजें जो जमाना बाद में देखेगा। तो दोहा ज्वेलरी वॉचेस एग्जीबिशन जो कि कतर टूरिज्म लेकर आता है, विजिट कतर लेकर आता है विद QNB ग्रुप, इस बार ऑफिशियल स्पॉन्सर है। एंड आई एम वेरी श्योर DJWE आने वाले टाइम के लिए स्टाइल स्टेटमेंट लेकर आता है, वॉचेस से लेकर ज्वेलरी तक जो दुनिया की नायाब चीजें हैं वो आप देख पाते हैं। तो अगर एक्सेस पैसा है तो दोस्त अर्ली एक्सेस टिकट लेकर जाओ एंड इस DJWE का हिस्सा बन जाओ। 89.6 मिर्ची 1, हम तो सेकंड हैंड से काम चलाएंगे, अभी बजट बहुत कम है सर, मिर्ची इट्स हॉट।

भाई तेरा बस लिखते गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौको ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbala. Burga, burga. La vilva la burga. Milci, burga.
1: Day. The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hall.
2: Hello, ये हंसा से मेरी बात करो भाई.
3: हेलो, क्या बोल रही हूँ मैं?
2: श्रीनिवास पुरी से हेड कांस्टेबल दरवील सिंह बोल रहा हूँ.
3: हाँ जी.
2: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी.
3: आई तो थी, किसी की पता नहीं किसकी थी.
2: ना आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी. आपको मालूम है आपने क्या किया है?
3: मैंने क्या किया
2: था? आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे जे जे, तीन लोगों ने आपको कॉल किया है. डायलर टोन सुन के एक आदमी सीरियस है, एम्स में भर्ती है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको यही डायलर टोन मिली थी, जे जे जे जे जे. ये दिल के मरीज के लिए कितनी खतरनाक है आपको ये पता है? तीन दिल के पेशेंट ने आपको फोन किया है और उनकी हालत खराब है. बेवकूफी की बात कर रही है.
3: मैंने अगर लगा रखा है, क्या कर सकती हूँ? मेरी अगर कॉलर टोन उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करे.
2: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है? नहीं है, मैं, मेरे को पता था, मैंने आपको कॉल किया, मेरा दिल हिल गया यार.
3: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं?
2: कितनी डायलर टोन है? तुम आए तो गली में आज चांद निकलता, या फिर ये लगा लीजिए, तुझे देखा तो ये जाना सनम.
3: आपका पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई.
2: दफा 300 ट्रिंग ट्रिंग के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह है, मैं आपको ये बता रहा हूँ. दिल्ली में इस तरह की कॉलर ट्यून नहीं लगाएंगी आप, समझिए आप.
3: ना,
2: आप क्या कर सकते हैं? आप मुझसे बहस करने जा रही हैं?
3: सुनिए मत, सुने. और अगर कोई बीमार है मेरे कारण से, थोड़ा ना बीमार हो
2: आपके कारण से. हंसा, मैं आपसे आखिरी बार तमीज से बात कर रहा हूँ. एक लेडी कांस्टेबल आएगी और आपको खींचते हुए लेके आएगी यहाँ श्रीनिवासपुरी थाने में. फिर आपको बताएंगे कि कैसे कॉलर ट्यून लगती है. आप बहस करने जा रही है मेरे से?
3: अच्छा ठीक है सर, आप जो बोलेंगे.
2: आपको कॉलर ट्यून लगानी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी कॉलर ट्यून लगाएंगी.
3: हाँ बताइए
2: आप कॉलर ट्यून लगाइए कुकड़ू को.
3: ठीक है सर, उसका मेरे को आप दे दीजिएगा, मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो.
2: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हमसा. और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुम्हारा मुर्गा बनाया है, मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था, और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है. जे
3: यार, आप लोग किसी दिन ना, मतलब
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट, इट्स हॉट. मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ. डिस्कवर करो वर्सटाइल शॉकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस. सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं.
5: तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट.
6: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा.
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
8: 89.6
4: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

लगे। बादशाह एंड अरिजीत सिंह का ये कोलैबोरेशन आपको सुनाया किसने? मस्त मौला गौरव। लेकिन हम तो उस साउंड को सुनने को बेकरार हैं जो फर्स्ट की तारीख में सुबह सुबह मेरे फोन पर आता है, टिंग से मैसेज, जिससे पैसे आ जाते हैं सैलरी के साथ। लेकिन अगर आपने बचा के रखे जनाब तो घर भेजो ना, रेट सम बता रहे हैं। एक कतरी रियाल के बदले मिलने वाले इंडियन रुपीज आज हैं 26.26 INR, 26 रुपए 26 पैसे भारतीय मुद्रा के। वहीं एक कतरी रियाल के बदले अगर हम श्रीलंकन रुपीज की बात करें 90.49। एंड इसके बाद अगर हम पाकिस्तान रुपीज की बात करें जनाब, वाहिद कतरी रियाल के बदले 76.13 पाकिस्तान रुपीज। एंड इसके बाद नेपाल रुपीज टपाई को हजूर आज एकदम 42 पर आके रुक गए। अच्छा जी, 42 रुपीज़ नेपाली मिलेगा। अगर नेपाली रुपीज़ के घर भेजन लाई तो एक कतरी रियाल के बदले 42 रुपीज़ का रेट चढ़ाई। अगर इसके बाद बांधू बांग्लादेशी टाका बात करके दादा बाड़ी थे पार्टी डो एक्टर कतरी रियाल के बदले आपको मिलने वाला बांग्लादेशी टाका 33.77, तो 33.77 बांग्लादेशी टाका का रेट छो। मस्त मोल गौरव के साथ ये सुना आपने मिर्ची बार, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
3: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं, और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
6: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
5: This initiative is driven by GWM.
7: यार शॉपिंग का प्लान है पर बजट थोड़ा टाइट लग रहा है।
8: अरे रिलैक्स, लूलू का हाफ पे बैक ऑफर सुना है।
7: हाफ पे बैक मतलब?
8: बस QAR 200 की शॉपिंग करो और QAR 100 का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली।
7: वाओ, किस किस चीज पे?
8: रेडीमेड गारमेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग और बेबी एक्सेसरीज।
7: मतलब शॉपिंग भी सेविंग भी?
8: बिल्कुल, वाउचर भी इन्हीं कैटेगरीज में रिडीम कर सकते हो, तो देर किस बात की। हेड टू लूलू, हाफ पे बैक ऑफर के साथ डबल फायदा। लूलू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
9: कट-कट।
10: अबे कौन है?
9: उत्तपा।
10: उत्तपा कौन?
9: उत्तपा में दो डोसा और सांबर ऑर्डर किया था, आया क्या?
10: खट खट, हू दैट?
4: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। मिर्ची, इट्स हॉट।

पता है ना रात को सोया जाता है, उलझा रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना, तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना।

0: क्या आपको भी पीके बनना है या फिर जादू बनकर दूसरे गोला पर जाना है? नहीं नहीं, तो हम नहीं भेज रहे, लेकिन उसकी एक फीलिंग जरूर आप ले सकते हैं, क्योंकि हमारे कल्चरल विलेज फाउंडेशन कतारा में होने वाला इंटरनेशनल स्पेस वीक 2026 का सेलिब्रेशन
1: #974974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: यस, हम आपको बता दें कि हमारे कतर के कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आए हैं और ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कतारा इंटरनेशनल स्पेस वीक सेलिब्रेशन, जो कि 4th ऑफ अक्टूबर से 7th ऑफ अक्टूबर के बीच हर एज कैटेगरी को कैटर करेगा। एंड खास बात यह है कि ये 4 दिनों का इवेंट रोज शाम 4 बजे शुरू होकर देर शाम 7 बजे तक चलेगा एट द प्लानिटेरियम अल थुरैया बिल्डिंग 41 कतारा कल्चरल विलेज। ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारे कतर के SLSAT, द कतर सैटेलाइट कंपनी, वर्ल्ड स्पेस वीक कतर एंड सुफार अहदफ, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एम्बेसडर है हमारे कतर में। ये सब मिलकर एक साथ प्रमोट करने वाले हैं उस अवेयरनेस को जो कि स्पेस साइंस को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर और किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट वहां भी सपोर्ट कर रहा है, इसको लेकर पूरा शो होने वाला है। एंड इसके लिए खास बात यह है कि आप किसी भी एज कैटेगरी के आप इसका हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। जैसे ही ऑर्गेनाइजर्स आपको QR कोड भेजेंगे या ऑनलाइन लिंक देंगे, आपको वहां जाकर रजिस्टर करना है, तो आप इसमें शामिल हो जाएंगे। इसमें फ्री वर्कशॉप भी आपको मिलेगी विद द मेन प्रोग्राम। ये खास चीज है कि अगर आपका बच्चा अंतरिक्ष बोले तो स्पेस में इंटरेस्ट रखता है, उसे ये इवेंट बिल्कुल मिस मत कराइएगा, ताकि वो भी आने वाले टाइम में स्पेस में जाए और जादू से दोस्ती करे और उसके लिए भी जादू बजाए पे पे पौ पौ पौ पौ पे पे और दूसरा गोला से होकर 89.6 मिर्ची वाली थॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अनु मलिक, आपको देख के लगता है कि जब आप पैदा हुए ना, आपने पहले मम्मी कहा ना पापा। आपने कहा होगा देखो बारिश हो रही है। But really, tell us, how old were you when you made this song?
3: What, I was 25 or something. It was raining cats and dogs. Waterfall से पानी गिर रहा था। सारे बादल नीचे आ चुके। And उस बीच में ना, I saw the little train coming out. देखो बारिश हो रही है। देखो ना देखो, it's raining, it's raining, it's raining.
2: अब Twinkle Twinkle Little Star और Baba Black Sheep के साथ में ये वाला गाना तो ऐड कर ही लेना चाहिए स्कूल्स में, है ना अनु मलिक? आप सुन रहे हैं मिर्ची, It's out.
0: Bollywood Bol Dal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bol Dal.
1: Only on Mirchi, It's Hot.

बहुत अच्छी बात है, कभी कभी अपनी गलती इस तरह से एक्सेप्ट करना कि हाँ मैं गलत, बिल्कुल सही होता है। अक्सर होता है हम लगे पड़े रहते हैं ना हमारी गलती नहीं है, और इस चक्कर में क्या है, सिर्फ बहस बात विवाद बढ़ता है। इससे अच्छा है कभी कभी गलती एक्सेप्ट करो और चीजों को बदलो। हाँ जी, यानी कि मतलब सॉल्यूशन बेस्ड ज्यादा करने की कोशिश करो, इस उम्मीद से कि आप भी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी सॉरी बोलकर चीजों को जाने देते हैं और आगे बढ़ते हैं। मस्त मौल और गौरव फिलहाल जा रहा है, लेकिन जाने के पहले ये जरूर याद दिलाएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने कुछ नए सर्टिफिकेट्स एंड रिन्यूअल सर्विसेज को MOCI ऐप पर लॉन्च कर दिया है। यस, अब MOCI ऐप आपके बिजनेस को और हेल्प कर सकता है, ओनर्स के लिए इजी बन सकता है, ऑडिटर्स एंड कंपनी रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने ट्रांजैक्शन क्विकली एंड एफिशिएंटली पूरा कराने के लिए मौका दे रहा है। यानी कि डिजिटलाइजेशन की इस दुनिया में कतर में हर चीज तेजी से आपकी एक क्लिक पर आ गई है, एंड इसी के लिए मैं कहता हूं कि यहां की हुकूमत को दिल से सलाम, जिनका विजन नेशनल 2030 जो है बहुत तेजी से पूरा हो रहा है। और दुनिया जब डिजिटलाइज हो रही है तो हम काहे चक्कर लगाएं ऑफिसेज के, उससे अच्छा है मोबाइल के एक क्लिक पर अपनी बहुत सारी सर्विसेज को आप ऑनलाइन ही पूरा कर लें, समय भी बचेगा एंड हम ग्लोबल वार्मिंग को और कम कर पाएंगे। 89.6 मिर्ची 1 पर मस्मोलक और लेगा अलविदा, लौटेगा सैटरडे की शाम शानदार में, तब तक ले हबीबी वीकेंड आ गया है, सारे शेर खुल गए, तो अगला गाना हमारे सारे शेरों के लिए मिर्ची पर इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: मैं रात को लेट हो जाता हूँ, सोसाइटी के कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाते हैं। फिर सब जाग जाते हैं और मुझे लुक्स देते रहते हैं। बहुत ऑकवर्ड हो जाता है सर, क्या करूँ?
1: अरे तो एक काम कर, चोरी करने दूसरी सोसाइटी में जा, कुत्ते ना हो।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

हेलो बॉडी पीपल, वेलकम टू क्लब मिर्ची, जहां वीकेंड का मतलब है मंडे की टेंशन को म्यूट और म्यूजिक का फुल वॉल्यूम ऑन करना। चाहे आप डांस फ्लोर पे हो, ट्रैफिक में, या बेड पे हॉरिजॉन्टल होके पार्टी कर रहे हो, टुनाइट वी डोंट जज। वेलकम वंस अगेन टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मी मिर्ची ओयोंधिका। सो लेट्स बिगिन दिस काउंटडाउन।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो विनीत जी।
3: हाँ जी
2: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर। क्या हाल चाल है, शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
3: सही हाँ, मैं तो चल रही है।
2: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने हैं बैंड के लिए?
3: 7:30 बजे तक।
2: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई हमारे, जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं।
3: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना, बचा जाएगा?
2: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाला एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
3: पागल हो गए हो क्या, क्या बजाएगा अकेला वो?
2: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये नहीं, ये अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
3: मैं क्या बात करूं यार, अकेला क्या बजाएगा?
2: नहीं वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए। हाँ विनीत जी मजा आया, ये मिस्टर थॉमस ये
3: क्या बजा रहे हैं, ये सुना आपने?
2: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर। मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने चल रहे हैं सर?
3: मैं घोड़ी तो चढ़े जाऊंगा यार।
2: अच्छा सर मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चलेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चलने वाले चलाएंगे?
3: हेलो हेलो,
2: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
3: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये?
2: विनीत मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर। हाँ
3: अरे कॉफिन ऑफिन कर, यहाँ क्यों लेके आए तुम?
4: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा। और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मत मानिए।
3: अच्छा भैया आप मेरे जाने वाले थे, बजाने वाले थे। कुकुडुकु
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मिल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सेटाइल शॉकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मिल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
6: आर बिजनेस इज आर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
7: पर दीदी आर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
9: 89.6 FM Mirchi 1.
10: It's hot.
11: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची. वीकेंड ऑफिशियली ऑन है. बस दो चीजें चाहिए, गुड म्यूजिक और वो फ्रेंड जो बोलता है बस एक ड्रिंक और फिर सनराइज देख के ही घर जाता है. कीप द वॉल्यूम अप बिकॉज़ द नाइट इज यंग और हम भी टेक्निकली यंग ही है.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
2: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musty, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
1: This initiative is driven by GWM.
3: यार, शॉपिंग का प्लान है, पर बजट थोड़ा टाइट लग रहा है.
4: अरे रिलैक्स, लूलू का हाफ पे बैक ऑफर सुना है.
3: हाफ पे बैक मतलब?
4: बस QAR 200 की शॉपिंग करो और QAR 100 का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली.
3: वाओ, किस किस चीज पे?
4: रेडीमेड गारमेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग और बेबी एक्सेसरीज.
3: मतलब शॉपिंग भी सेविंग भी.
4: बिल्कुल, वाउचर भी इन्हीं कैटेगरीज में रिडीम कर सकते हो, तो देर किस बात की. हेड टू लूलू, हाफ पे बैक ऑफर के साथ डबल फायदा. लूलू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.
5: कौन है?
6: स्टेन.
5: स्टेन कौन?
6: स्टेन कर दिया मेरे पैंट को. मैं नहीं देता पैसे, जाओ.
7: खट खट, who that?
8: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.
9: Ladies and gentlemen, we are gonna go. We are gonna go. We are gonna go.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
2: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची 1, इट्स हॉट।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो।

वेलकम बैक पार्टी पीपल। अगर आप डांस फ्लोर पे हो रिस्पेक्ट, और अगर सोफा पे हो ऑल्सो मोर रिस्पेक्ट। अगर आप दोनों के बीच डिसाइड नहीं कर पा रहे कंग्रेचुलेशन, यू आर द वीकेंड। क्लब मिर्ची में म्यूजिक कंटिन्यूज।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा, जा।
2: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन।
4: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: खट खट
2: हुदैट
1: अकबर
2: अकबर हु
1: अरे अकबर बता दिया है बार बार नहीं ना बता पाएंगे
2: खट खट हुदैट
3: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट
4: लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोना गो वी आर गोना गो वी आर गोना गो ऑन अ राइड
0: क्लब मिर्ची

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
2: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
3: बहुत कुछ होगा।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
6: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो।

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची। वीकेंड ऑफिशियली ऑन है। अब बस दो चीजें चाहिए, गुड म्यूजिक और वो फ्रेंड जो बोलता है बस एक ड्रिंक और फिर सनराइज देख के ही घर जाता है। कीप द वॉल्यूम अप बिकॉज़ द नाइट इज यंग, और हम भी टेक्निकली यंग ही है।

0: Hot Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
2: जी बिल्कुल बताइए सवाल क्या है
1: सर वो मुझे हेल्दी डाइट शुरू करना है कैसे करूं
2: अरे तो सिंपल है ना ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कर मैं भी सबसे पहले ब्रेकफास्ट ही करता हूँ
3: Fasten your seatbelts and wait for the no smoking sign. We are gonna go. We are-

चक दे इंडिया इंडिपेंडेंस का अभी भी फीवर जारी है ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन दिखा। अब इंडिपेंडेंस से स्ट्रेट टू पैसा, बिकॉज आफ्टर ऑल उसके ऊपर ही तो सब डिपेंडेंट है ना। क्लब मिर्ची इट इज।

मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंदिका के साथ. दिस प्लेलिस्ट इज मूविंग फास्टर देन योर वीकेंड क्रश. वी हैव केसरिया फॉर यू राइट नाउ. लेट्स गो.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Burga, burga. Navid wala burga. Mirchi burga.
2: Day. The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hut.
3: Hello,
4: ये हंसा से मेरी बात कराओ भाई.
3: Hello, क्या बोल रही हूँ मैं?
4: श्रीनिवासपुरी से हेड कांस्टेबल दरबील सिंह बोल रहा हूँ.
3: हाँ जी.
4: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी.
3: आई तो थी, किसी की पता नहीं किसकी थी.
4: ना आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी. आपको मालूम है आपने क्या किया है? आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे जे जे, तीन लोगों ने आपको कॉल किया है डायलर टोन सुन के. एक आदमी सीरियस है, एम्स में भर्ती है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको यही डायलर टोन मिली थी जे जे जे जे जे. ये दिल के मरीज के लिए कितनी खतरनाक है आपको ये पता है? तीन दिल के पेशेंट ने आपको फोन किया है और उनकी हालत खराब है. बेवकूफी की बात कर रही है.
3: मैंने अगर लगा रखा है, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी अगर कॉलर टोन उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करे.
4: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है? नहीं है, मैं, मेरे को पता था, मैंने आपको कॉल किया, मेरा दिल हिल गया यार.
3: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं?
4: कितनी डायलर टोन है? तुम आए तो गली में आज चांद निकलता, या फिर ये लगा लीजिए, तुझे देखा तो ये जाना सनम. आपका
3: इस टाइप पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई है.
4: दफा 300 ट्रिंग ट्रिंग के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह है, मैं आपको ये बता रहा हूँ. दिल्ली में इस तरह की कॉलर ट्यून नहीं लगाएंगी आप, समझिए आप. आप क्या कर सकते हैं? आप मुझसे बहस करने जा रही हैं?
3: नहीं, मत सुने. और अगर कोई बीमार है मेरे कारण से, थोड़ा ना बीमार
4: होगा आपके कारण से. हंसा, मैं आपसे आखिरी बार तमीज से बात कर रहा हूँ. एक लेडी कांस्टेबल आएगी और आपको खींचती हुई लेके आएगी यहाँ पे श्रीनिवासपुरी थाने में. फिर आपको बताएंगे कि कैसे कॉलर ट्यून लगती है. आप बहस करने जा रही है मेरे से?
3: अच्छा ठीक है सर, आप जो बोलेंगे.
4: आपको कॉलर ट्यून लगानी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी कॉलर ट्यून लगाएंगी.
3: हाँ बताइए
4: आप कॉलर ट्यून लगाइए कुकड़ू को.
3: ठीक है सर, उसका मेरे को आप दे दीजिएगा, मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो.
4: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हमसा, और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुम्हारा मुर्गा बनाया है, मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था, और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है. जे जे जे.
3: यार आप लोग किसी दिन ना, मतलब
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: खट खट.
7: पुरेर.
6: बनता.
7: बनता हूँ.
6: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को.
7: खट खट. हू दैट?
5: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1. इट्स हॉट.
8: लेडीज एंड जेंटलमैन, we are gonna go on a ride.

पीपल, अगर आप डांस फ्लोर पे हो रिस्पेक्ट, और अगर सोफा पे हो ऑल्सो मोर रिस्पेक्ट. अगर आप दोनों के बीच डिसाइड नहीं कर पा रहे, कंग्रेचुलेशंस, यू आर द वीकेंड. क्लब मिर्ची में म्यूजिक कंटिन्यूज.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Bordal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: The late Irfan Khan से एक बार पूछा गया कि कहाँ की बारिश आपको सबसे ज्यादा पसंद है? Is it Delhi? Is it Mumbai?
4: उसका मजा सिर्फ राजस्थान में है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ बरसात जो है देर से होती है। वहाँ जो है सावन को सेलिब्रेट किया जाता है, सावन भादो जो कहते हैं, यू नो, फसल भी कटती है और झूले लगते हैं। राजस्थान में जो है बरसात में भीगने का और बरसात का जो मजा है वो बहुत अलग है।
3: ऐसा एक दिन नहीं जाता जब इरफान खान का ख्याल नहीं आता। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड
2: बोल्ड, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन,

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: सर, मैं जब भी घर आता हूँ ना, पापा जाग रहे होते हैं, वो सोते ही नहीं है, तो क्या करूँ।
1: अच्छा, पापा जाग रहे होते हैं, तो एक काम कर, चोरी करने दूसरों के घर जा बच्चू।

Welcome back, party people. Club Mirchi जा रही है, DJ Richard Mirchi और यूं तक आपके साथ. Weekend sunny हो या rainy, party mood sunny तो होना ही है. तो let's see a sunny together.

और म्यूजिक लाउड, मूड लाउडर। नेबर्स कंप्लेन करे तो वॉल्यूम कम कर देना, पड़ी नहीं। प्रायोरिटीज पीपल, क्लब मिर्ची रेस विद डीजे रिचर्ड, मिर्ची और योम्तिका।

वीकेंड पे ये मेरा दिल किसी को भी दे सकती हूँ मैं, बट क्रेडिट कार्ड नेवर, दैट्स इमोशनली अनअवेलेबल. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची आई ऑन द कार.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: खट खट
2: कौन है?
1: अज्जू।
2: अज्जू कौन?
1: अज्जू ना आए बालमा, सावन बीता जाए। होए
2: खट खट हो दैट
3: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट
4: लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोना गो ऑन अ राइड।

0: Club Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
4: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं। और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: खट खट। अगर कर
7: हो,
6: अगर करना है तो कर वरना छोड़ दे।
7: खट खट हो दैट।
5: Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.
8: Ladies and gentlemen, we are going.

वेलकम बैक पार्टी पीपल। सैया जी हो या बेस्टी, वीकेंड पे एक सवाल फिक्स्ड है, कितने बजे निकलोगे यार? एंड द आंसर इज बस 5 मिनट्स, दैट नेवर कम्स। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंटिका।

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Bolda.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: करण जोहर, ऑनेस्टली बताइए, व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट द मॉनसून?
4: बारिश का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ मैं, हमेशा कहता हूँ कि आसमान के आंसू अभी गिरने लगे हैं। आई ऑलवेज लुक एट मॉनसून के ये बस उनके आंसू हैं, तो वी हैव टू पहुंच जाए जल्दी तो हो गया। बट आई नो के रेन और बारिश बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो तीन महीने में हमेशा ये मेरे फेवरेट महीने नहीं है साल के।
3: ये थे करण जोहर, हु स्पोक लाइक अ ट्रू ब्लू मुंबईकर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डा,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Ladies and gentlemen, we are gonna go
6: on a ride.

0: जय जय शिव शंकर रज मूड है भयंकर रंग उड़ रे दो
1: यू आर फनी विद ओयोंका एंड डीजे रिचर्ड ऑन क्लब

डी जो रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन टेक अस स्टार्टिंग योर वीकेंड. फ्रेंड्स के साथ पार्टी करो, फैमिली के साथ चिल करो, या फिर खुद के साथ डेट पे जाओ, बिकॉज हैप्पीनेस को कंपनी की जरूरत नहीं, सिर्फ थोड़ा म्यूजिक और जीरो जजमेंट चाहिए. दैट इज क्लब मिर्ची. हैव अ ब्यूटीफुल वीकेंड एंड हियर्स द साइन ऑफ ट्रैक. इट्स कॉल्ड स्वीट डिस्पोजिशन. टाटा.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: ये जब से मुझे चश्मा लगा है नंबर बढ़ता ही जा रहा है, इसे कैसे रोकूं?
1: अरे सिंपल है ना मामू, पहली फुर्सत में चश्मा निकाल के साइड में रख दो ना, प्रॉब्लम सॉल्व।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
3: Ladies and gentlemen, we are gonna go on a ride.

मुकाबला डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योन टिका का विद क्लब मिर्ची एंड बेबी नो नो वी हेट लव स्टोरीज बट यू लव आई हेट लव स्टोरीज दैट्स व्हाट वी गोना प्ले ऑन क्लब मिर्ची लेट्स गो

0: मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची।
1: Hello, body people. Welcome to Club मिर्ची, जहां वीकेंड का मतलब है मंडे की टेंशन को म्यूट और म्यूजिक का फुल वॉल्यूम ऑन करना। चाहे आप डांस फ्लोर पे हो, ट्रैफिक में, या बेड पे हॉरिजॉन्टल होके पार्टी कर रहे हो, टुनाइट वी डोंट जज। वेलकम वंस अगेन टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मी मिर्ची ओयोंधिका। सो लेट्स बिगिन दिस काउंटडाउन।

0: Hot Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bala, uska bala, saka bala. Bala. Burga, burga. Nafiyat bala, burga. Mirchi, burga.
3: हेलो
4: विनीत जी।
3: हाँ जी
4: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर। क्या हाल चाल है, शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
3: सही हाँ, हाँ मैं तो चल रही है।
4: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
3: 7:30 बजे तक।
4: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई, हमारे जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं।
3: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना, बचा जाएगा?
4: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
3: पागल हो गए हो क्या, क्या बजाएगा अकेला वो?
4: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये ना ये अच्छा अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसके कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए हैं सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
3: मैं क्या बात करूं यार अकेला क्या बजाएगा?
4: नहीं वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चलेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए। हाँ विनीत जी मजा आया, ये मिस्टर थॉमस ये
3: क्या बजा रहा है ये सुना आपने?
4: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर। मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चल रहे हैं सर?
3: मैं घोड़ी तो चढ़ी जाऊंगा यार।
4: अच्छा सर मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चलेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चलने वाला चलाएंगे?
3: हेलो हेलो।
4: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
3: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये है?
4: विनीत जी मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, अभी पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर। हाँ
3: अरे कॉफिन ऑफिन करो, यहाँ क्यों लेके आए तुम?
5: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा। और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मत मानिए।
3: अच्छा भैया आप मेरे यहाँ जाने वाले थे,
6: बजाने वाले थे। मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
7: 89.6
6: Mirchi. Ladies and gentlemen.

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची. वीकेंड ऑफिशियली ऑन है. बस दो चीजें चाहिए, गुड म्यूजिक और वो फ्रेंड जो बोलता है बस एक ड्रिंक और फिर सनराइज देख के ही घर जाता है. कीप द वॉल्यूम अप बिकॉज़ द नाइट इज यंग और हम भी टेक्निकली यंग ही है.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
4: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं। और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
7: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
8: बार बार।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट
11: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: अनु मलिक, आपको देख के लगता है कि जब आप पैदा हुए ना, आपने पहले मम्मी कहा ना पापा, आपने कहा होगा देखो बारिश हो रही है. But really, tell us, how old were you when you made the song?
4: What, I was 25 or something. It was raining cats and dogs. Waterfall से पानी गिर रहा था. सारे बादल नीचे आ चुके. And उस बीच में then I saw the little train coming out. देखो बारिश हो रही है. देखो ना देखो, it's raining, it's raining, it's raining.
3: अब Twinkle Twinkle Little Star और बाबा ब्लैक शीप के साथ में ये वाला गाना तो ऐड कर ही लेना चाहिए स्कूल्स में, है ना अनु मलिक? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स आउट.
1: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान। खान, खान, खान, खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: काउंटडाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहाँ कहाँ थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुँचाया।
7: यहाँ की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहाँ का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका फेवरेट।

वेलकम बैक पार्टी पीपल। अगर आप डांस फ्लोर पे हो, रिस्पेक्ट, और अगर सोफा पे हो, ऑल्सो मोर रिस्पेक्ट। अगर आप दोनों के बीच डिसाइड नहीं कर पा रहे, कंग्रेचुलेशंस, यू आर द वीकेंड। क्लब मिर्ची में म्यूजिक कंटिन्यूज।

चोरी हो या डेटा लीक, 2026 में कुछ भी सेफ नहीं है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका, और तूने तो चोरी किया रे जिया।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: मैं रात को लेट हो जाता हूँ, सोसाइटी के कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाते हैं, फिर सब जाग जाते हैं और मुझे लुक्स देते रहते हैं। बहुत ऑकवर्ड हो जाता है सर, क्या करूँ?
1: अरे तो एक काम कर, चोरी करने दूसरी सोसाइटी में जा, जा कुत्ते ना हो।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: हेलो
2: हाय, ये से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया 9 दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया 9 दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए 3। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए 6। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए 5। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर बिल चाहिए तो दबाइए 7। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
1: हेलो
2: हाय, ये फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4198-3983।
3: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवीद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार, अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं कभी वो दबा रहे हैं, आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका
1: वही मैं सुधरा था, मतलब।
2: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
1: हाँ जी,
2: कुकड़ों को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: खट खट।
6: हू दैट?
5: जाहिर।
6: जाहिर? जाहिर हूँ।
5: जाहिर सी बात है, मैं ही हूँ और कोई नहीं।
6: खट खट। हू दैट?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.
7: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go.
4: On a ride.
8: Club Mirchi.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
4: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं। और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM,
9: मिर्ची वन। इट्स हॉट।
10: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: अभिजीत सावंत, जब भी आपके बारे में सोचते मोहब्बतें लुटाऊंगा यही याद आता है। बारिशों के लिए एक अलग

0: है।
1: अच्छा वो झड़ी है क्या? मैं हमेशा लगी आज सावन की फिर वो छड़ी है गाती थी अभिजीत सावंत। थैंक यू फॉर एजुकेटिंग अस। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
4: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
5: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट
9: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची। वीकेंड ऑफिशियली ऑन है। अब बस दो चीजें चाहिए, गुड म्यूजिक और वो फ्रेंड जो बोलता है बस एक ड्रिंक और फिर सनराइज देख के ही घर जाता है। कीप द वॉल्यूम अप बिकॉज़ द नाइट इज यंग और हम भी टेक्निकली यंग ही है।

करंट जारी है ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन दिखा। अब इंडिपेंडेंस से स्ट्रेट टू पैसा, बिकॉज आफ्टर ऑल उसके ऊपर ही तो सब डिपेंडेंट है ना। क्लब मिर्ची रे।

मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंदेका के साथ. दिस प्लेलिस्ट इज मूविंग फास्टर देन योर वीकेंड क्रश. वी हैव केसरिया फॉर यू राइट नाउ. लेट्स गो.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: Day. The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hut.
3: Hello, ये हंसा से मेरी बात करा भाई.
4: हेलो, क्या बोल रही हूँ मैं?
3: श्रीनिवासपुरी से हेड कांस्टेबल दरबील सिंह बोल रहा हूँ.
4: हाँ जी.
3: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी.
4: आई तो थी, किसी की पता नहीं किसकी थी.
3: ना आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी. आपको मालूम है आपने क्या किया है?
4: मैंने क्या किया
3: था? आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे तीन लोगों ने आपको कॉल किया है, डायलर टोन सुन के एक आदमी सीरियस है, एम्स में भर्ती है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको यही डायलर टोन मिली थी, जे ये दिल के मरीज के लिए कितनी खतरनाक है आपको ये पता है? तीन दिल के पेशेंट ने आपको फोन किया है और उनकी हालत खराब है. बेवकूफी की बात कर रही है.
4: मैंने अगर लगा रखा है, क्या कर सकती हूँ? मेरी अगर कॉलर टोन उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करे.
3: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है? नहीं है, मैं, मेरे को पता था, मैंने आपको कॉल किया, मेरा दिल हिल गया यार.
4: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं?
3: कितनी डायलर टोन है? तुम आए तो गली में आज चांद निकलता, या फिर ये लगा लीजिए, तुझे देखा तो ये जाना सनम.
4: आपका इस टाइप पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई है.
3: दफा 300 ट्रिंग ट्रिंग के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह है, मैं आपको ये बता रहा हूँ. दिल्ली में इस तरह की कॉलर ट्यून नहीं लगाएंगी आप, समझिए आप.
4: ना,
3: आप क्या कर सकते हैं? आप मुझसे बहस करने जा रही
4: हैं? और अगर कोई बीमार है मेरे कारण से, थोड़ा ना बीमार हो
3: आपके कारण से. हंसा, मैं आपसे आखिरी बार तमीज से बात कर रहा हूँ. एक लेडी कांस्टेबल आएगी और आपको खींचती हुई लेके आएगी यहाँ श्रीनिवासपुरी थाने में, फिर आपको बताएंगे कि कैसे क्वालिटी लगती है. आप बहस करने जा रही है मेरे से?
4: अच्छा ठीक है सर, आप जो बोलेंगे.
3: आपको कॉलर ट्यून लगानी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी कॉलर ट्यून लगाएंगी.
4: हाँ बताइए
3: आप कॉलर ट्यून लगाइए कुकड़ू को.
4: तो ठीक है सर, उसका मेरे को आप दे दीजिएगा, मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो.
3: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हमसा, और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुम्हारा मुर्गा बनाया है, मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था, और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है. जे
4: यार आप लोग किसी दिन ना, मतलब
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: ये पगला.
7: नहीं बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना.
8: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
9: कैसे रुक सकता है?
5: Qatar का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
5: FM Mirchi 1. It's hot.
11: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

वेलकम बैक पार्टी पीपल। अगर आप डांस फ्लोर पे हो रिस्पेक्ट, और अगर सोफा पे हो ऑल्सो मोर रिस्पेक्ट। अगर आप दोनों के बीच डिसाइड नहीं कर पा रहे कंग्रेचुलेशंस, यू आर द वीकेंड। क्लब मिर्ची में म्यूजिक कंटिन्यूज।

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
4: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं, और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Bordal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: शिल्पा राव, आपका तो हर गाना हमारा फेवरेट है, लेकिन इस बारिश में आपका फेवरेट गाना कौन सा है?
4: I like that song.

0: फॉरगॉट द फिल्म्स नेम.
1: फिल्म का नाम था थक्षक और इस गायक का नाम शिल्पा राव. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना.

0: ट्रैफिक का शोर कहाँ कहाँ थमा है सबको बताया, स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुँचाया।
1: यहाँ की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे, यहाँ का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूत समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
2: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है।

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is Akshay Kumar.
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान। खान, खान, खान, खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

वेलकम बैक पार्टी पीपल, क्लब मिर्ची जा रही है, डीजे रिचर्ड मिर्ची और योम्तिक आपके साथ। वीकेंड सनी हो या रेनी, पार्टी मूड सनी तो होना ही है, तो लेट्स या सनी सनी टुगेदर।

म्यूजिक लाउड, मूड लाउडर। नेबर्स कंप्लेन करे तो वॉल्यूम कम कर देना, पार्टी नहीं। प्रायोरिटीज पीपल, क्लब मिर्ची डेज विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योम टेका।

वीकेंड पे ये मेरा दिल किसी को भी दे सकती हूँ मैं, बट क्रेडिट कार्ड नेवर, दैट्स इमोशनली अनअवेलेबल. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची आयोंटिका.

0: 춤과
1: Club Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
2: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष महापुरुष
3: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स जबरदस्त ट्रैक्स कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
5: FM
4: मिर्ची 1
5: इट्स हॉट
6: लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोना गो वी आर गोना गो वी आर

वेलकम बैक पार्टी पीपल। सैया जी हो या बेस्टी, वीकेंड पे एक सवाल फिक्स्ड है, कितने बजे निकलोगे यार? एंड द आंसर इज बस 5 मिनट्स, दैट नेवर कम्स। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल ऑन टिका।

ओ जय जय शिव शंकर, राज मूड है भयंकर।